सुबह का समय सिर्फ एक नया दिन नहीं लाता, ये मन को नया विश्वास भी देता है। जब सूरज धीरे धीरे आसमान में फैलता है तो अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन में सकारात्मक समय या सोच आती है तो डर और निराशा खुद दूर होने लगते हैं।

कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ कुछ पल। खुले आसमान के नीचे बैठना, पेड़ों की सरसराहट सुनना या चिड़ियों की आवाज महसूस करना मन को फिर से जीवित कर देता है। आज अगर मौका मिले तो अपने घर की बालकनी, छत या किसी पार्क में कुछ पल जाकर जरूर बिताएं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका सब काम सही समय पर होता है।

कितनी खूबसूरत बात है कि प्रकृति बदले में नफरत नहीं देती। अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ी विनम्रता ले आएं, तो रिश्ते और जिंदगी दोनों खूबसूरत हो जाएं। आज किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद जरूर कहिए, शायद आपकी एक छोटी सी बात किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना दे। अच्छे इंसान फूलों की तरह होते हैं और उनकी खुशबू दूर दूर तक महसूस होती है।

इन खूबसूरत संदेशों के साथ आप मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। उम्मीद है कि भोर सुहाने की ये सुबह आपके मन में ताजगी, शांति और सकारात्मकता लाई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई बातों और नए एहसास के साथ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि तदनुसार 11 मई 2026 सुबह के 5:53 और ठीक 37 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का बालकांड।

7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज। आज सवेरे कार्यक्रम होगा 7:30 और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर न्यूज इन इंग्लिश प्रसारित की जाएंगी।

ये दिल लगी म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। साढ़े दस बजे कार्यक्रम होगा दिल का मेल बॉक्स। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी इंदु पांडे। ग्यारह 11:10 पर कार्यक्रम होगा तस्वीर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लेह लद्दाख के बारे में, प्रस्तुत करेंगी इंदु पांडे। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी भूल रही हूँ

0: कलाकार बेमिसाल ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:10 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेत्री लक्ष्मी छाया पर कार्यक्रम, प्रस्तुत करेंगी शबनम। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। 6 बजने को है, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। स्वागत आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार। समय हुआ है 6:12 और 26 सेकेंड।

महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार जब किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।

आचार्य चाणक्य के अनुसार जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे।

परमहंस योगानंद ने कहा है कि लोहे को आग में लाल होने तक तपाए बिना आप फौलाद नहीं बना सकते, इससे कोई हानि नहीं होती। समस्याओं और रोगों में हमारे लिए एक शिक्षा निहित होती है। हमारे दुखदायी अनुभव हमारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमें निर्मल करके शीघ्रता से घर वापस ले जाने के लिए हैं। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक व्यग्र कोई और नहीं है।

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी प्रसन्न होते हैं। वे ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है।

तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से

आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ सुप्रभात। 7:11 और 19 सेकंड। आइए सुनते हैं आज कल, कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। दोपहर और शाम के समय तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। सूर्योदय हुआ 5:33 पर और सूर्यास्त का समय है 7:02। गोल्ड सुप्रभात में आइए अब सुनते हैं तलाश फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: फरमाना।
1: आज हम याद कर रहे हैं जय कृष्णमूर्ति जी को, जो एक दार्शनिक, वक्ता और लेखक थे। साथ ही आज ही जयंती है असफ अली जी की। वे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और प्रतिष्ठित राजनेता थे। साथ ही आज ही के दिन जन्म हुआ था सादत हसन मंटो का। वे उर्दू साहित्य के सबसे महान और निर्भीक लघु कथाकार, नाटककार और उपन्यासकार थे। फिलहाल 7:20 और 31 सेकंड हो गया है। गोल्ड सुप्रभात में अब सुनते हैं ये अगला गीत।

एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी, 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर प्रोग्राम होगा तस्वीर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल, 3:10 पर मन भावन और शाम 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते।

0: और श्रोताओं, अब चुनावी खबरों का रुख कर लेते हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हेमंत ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 126 सदस्यों की विधानसभा में 102 सीटें मिली थी। भाजपा ने 82 और गठबंधन के दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 10-10 सीटें जीती थी।
1: So listeners, India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments, which include solar cells, wafers and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts.
0: उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच

0: सकते हैं, नंबर है 0112331-04-81, 0112371-7117 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और इसके अलावा #AskAIR के साथ आप एक्स पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों की बात करेंगे। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
1: Well, yes, the 17th Assembly session in Tamil Nadu with the formation of a new government will begin today. Yesterday, we saw the oath-taking ceremony of C. Joseph Vijay, the CM. The day will begin with all the new MLAs taking oath as pro-term speaker. Karupaya will lead the assembly today. The speaker will be elected today or tomorrow after all members take their pledge. The new government will have to prove their majority before the 13th of this month. Farhat, another update, where the Bureau of Indian Standards seized 2,870 packs of balloons and 3,000 toys from outlets in Socarpet for violating quality control norms. Acting on complaints, BIS carried out the seizure at Ambika Stores, Mahavir Enterprises and Kshetrapal Impex. So the BIS has urged consumers to verify licenses before buying products. Public can verify BIS licenses through the BIS Care app, the BIS portal or by scanning QR codes.
0: और चेन्नई के बाद अब राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के सभी 13 जिलों में आज एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा, उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वाधान से चलाया जाएगा। और इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, ताकि राजधानी को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग और हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
1: Nafarat, in Bengaluru, a special drive was conducted to clear encroachments from footpaths across different municipal wards. The Chief Commissioner of Greater Bangalore Authority, Maheshwar Rao, and Zonal Commissioners visited different wards to supervise the drive. Action was initiated against vendors illegally collecting and disposing waste on the side of the Jakku Railway Parallel Road. A fine of 10,000 rupees was imposed on the persons which were responsible for illegal dumping of waste. A few shop owners were served notices for illegally encroaching on the footpath. The officials were directed to complete the railway parallel road work from Jakur village to Airport Road. A special enforcement drive was also conducted within Bengaluru East City Corporation jurisdiction. A team consisting of 4 marshals, 10 labourers, 3 tractors and 1 JCB machine carried out the operation to clear footpaths so the roadside stalls, push carts and construction materials and the illegal advertisement structures were removed.
0: और अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नासिक स्थित विशेष जांच दल SIT राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकनकर से स्वघोषित धर्मगुरु अशोक खरात से कथित संबंधों के सिलसिले में पूछताछ कर रहा है। SIT का गठन अशोक खरात के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों और उनके राजनीतिक संबंधों की जांच के लिए किया गया है। पुलिस अधिकारी तेजस्वी सतपुते के नेतृत्व में SIT की जांच कल नासिक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी में शुरू हुई। ये जांच खरात के शिवानिका ट्रस्ट में चाकनकर की कथित भूमिका और उनके मामलों को दबाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर संभावित प्रभाव डालने के आरोपों से संबंधित थे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि उत्तरी मुंबई में कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा। सभी पात्र निवासियों के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु एसआरए परियोजनाओं की उचित योजना बनाई जाएगी। ये आश्वासन उत्तरी मुंबई में आयोजित पहली एसआरए जन शिकायत बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में एसआरए परियोजनाओं से संबंधित लगभग 150 शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे सैकड़ों निवासियों को राहत मिली। निवासियों को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली, पानी, खाना पकाने की गैस, शौचालय और डिजिटल कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है।
1: हेडिंग नाउ टू हैदराबाद, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज प्रेज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विकसित भारत 2047 विजन फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। सो एट एन इवेंट इन हैदराबाद यस्टरडे ही अनाउंस्ड दैट तेलंगाना एम्स टू अचीव अ $1 trillion इकोनॉमी बाय 2034 एंड $3 trillion बाय 2047। The chief minister noted that Telangana has less than 3% of India's population, which contributes nearly 5% to the national GDP, and the state targets increasing this contribution to 10% by 2047. Yesterday's event marked the inauguration of the Kakatiya Mega Textile Park and various railway projects in Telangana.
0: और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे की भी उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा करने की संभावना है। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा होगी। नव निर्वाचित विधायकों के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुबह लगभग 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। श्रोताओं, महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज बारिश की संभावना यहां पर व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई अगेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई and there is a possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperature, minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 38 degrees Celsius in Hyderabad, Farhat.
0: Ji.
1: And now, let's tell you about the special day. What's special about 11th May? We'll begin with this particular segment. So every year, on May 11, India celebrates National Technology Day. This day honors the successful nuclear test conducted at Pokhran on May 11 and on May 13 in 1998. These tests, collectively known as Operation Shakti, marked a significant milestone in India's technological and scientific capabilities and established the country as a nuclear power.
0: जी बिल्कुल शगुन, और ये उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर भी तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इस दिन परीक्षण उड़ान भरी थी, और इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था।
1: विद मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अकम्प्लिश्ड ऑन द सेम डे द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मई 11 एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
0: जी, और इसी दिन भारत दुनिया का 6वां परमाणु शक्ति वाला देश बना था, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज ही के दिन सन 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नव निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया।
1: इन 330 The city of Constantinople was dedicated and then became the capital of the Eastern Roman Empire. And the earliest known performance of William Shakespeare's comedy, The Winter's Tale, was staged on 11th May 1611 at the Globe Theatre in London. In 1812, that the dance from waltz was first introduced in English ballrooms. And Farhat, many people, they ride bicycles, right? Mm-hmm. Perhaps many of the listeners as well, we also have done it, maybe still do it. Well, it was on this day in 1893 that Henri Desgrange

0: established the world's first bicycle world record, travelling 35.325 kilometer in just an hour.
1: जी, और बात अगर की जाए 1922 की, तो रेडियो स्टेशन KGU का आज ही के दिन हवाई में प्रसारण हुआ था.
0: In 1928, the first ever television station was opened by General Electric in New York.
1: सन 1956 में गोल्ड कोस्ट को ब्रिटेन के शासन से मुक्त कराने की घोषणा की गई थी. वहीं गोल्ड कोस्ट, जिसे आज हम घाना के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन की सरकार ने उसकी आजादी के लिए 6 मार्च 1957 की तारीख मुकर्रर की थी. और 1998 में यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का आज ही के दिन बनाया गया था. और सन 2008 में न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था. तो ये तो थी इतिहास की बात. और अब आइए हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. तो सबसे पहले शगुन हम याद कर रहे हैं मृणालिनी साराभाई को. और एक डांस की एक महान हस्ती थी ये, जिन्होंने भरतनाट्यम और कथकली को ग्लोबल स्टेज पर मशहूर बनाया. केरला में जन्मी मृणालिनी ने बचपन में स्विट्जरलैंड में वेस्टर्न डांस की डालक्रूज तकनीकी सीखी, जिसने उनके डांस को एक अनोखी लय और ऊर्जा दी. उन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की और मशहूर विक्रम साराभाई से विवाह किया. उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की भी स्थापना की, जिसमें 18,000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग भी दी गई.
0: वेल राइट फरत, मृणालिनी साराभाई, द क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर. शी वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विच इज एन इंस्टीट्यूट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस, ड्रामा, म्यूजिक एंड पपेट्री एज वेल. शी रिसीव्ड मेनी डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स, साइटेशंस इन रिकग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, एंड शी ट्रेन्ड ओवर 18,000 स्टूडेंट्स इन भरतनाट्यम एंड कथकली. नाउ Let's listen to an excerpt from an interview which she, and this is what we found on our Prasar Bharati archive. So let's listen in and listen to her diverse views actually. Listen in.
2: Dance, of course, is my main, and movement, I think, I've always liked to express through movement, which is through classical dance and also creative work. But I also write a lot and read a lot. My favorite thing is to buy books and read and enjoy so much. I love poetry. So there's so many landscapes of life. And in each landscape, one finds something different to inspire. I suddenly am talking about Bharatanatyam, and I remember my childhood and Wordsworth, or I'm talking about reincarnation.
0: Wow, such diverse views and other areas of contribution besides choreography. More than 300 dance dramas. She has also written many novels, poetry, plays and stories for children as well. So today, listeners, we are also remembering another artist. The name is Bob Marley. Today it's his death anniversary. So considered one of the pioneers of reggae, he fused elements of reggae and rock steady as well, and was renowned for his distinctive vocal and songwriting style. So the singer-songwriter increased the visibility of Jamaican music worldwide and became a global figure in popular culture.

0: little thing is gonna be all right.
1: जी बिल्कुल शगुन. और अब आगे बढ़ते हैं, हम याद कर रहे हैं रामाकांत शुक्ला को. संस्कृत और हिंदी भाषाओं के भारतीय विद्वान रहे ये. भारत सरकार ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया. और इसके अलावा 40 साल तक संस्कृत समाचार इन्होंने पढ़े. और इनका मानना था कि संस्कृत मरी नहीं है, सो रही है, उसे जगाना बेहद जरूरी है. इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति सम्मान संस्कृत विद्वान के रूप में और वाल्मीकि सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया.
0: Well, today, listeners, we are also remembering Ali Asif Ali. Well, he gave up his practice in the freedom fighter. Ali Asif Ali gave up practice in law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. So he took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. So the revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali. So Asif Ali was imprisoned during the Quit India movement in 1942 and was detained in Ahmednagar Fort Jail. After his release, well, he served as the Minister for Railways in the interim government

0: formed in August 1946, well, we salute the great Indian.
1: और अब आइए हम याद कर लेते हैं सागर सरहदी को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था. हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक रहे ये. इन्होंने कभी कभी, चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी. एक नाटक प्रेमी होने के साथ ही इन्होंने फिल्मों के लिए संवाद लेखन और निर्देशन भी किया. स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी रहे. तो आइए सुन लेते हैं फिल्म बाजार से ये प्यारा सा.
2: दीदी,

दिग्गज कलाकारों को मौका दिया था। उनका नाम उन सितारों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सागर सरहदी का नाम उन लेखकों में भी शामिल था जिन्होंने अपनी लेखनी से एक बदलाव लाने की कोशिश की, और फिल्म कभी कभी में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पटकथा लिखी। तो आइए सुन लेते हैं उसी फिल्म से ये गीत।

इसके साथ ही अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। तो शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना

0: की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि

0: ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC U17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा U17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई U15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगबा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-31-04-81, 011-23-31-07-17 और 0111 23 71 71 0।

0: व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाओ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान

0: शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की जरे मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह रायजनी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुर्दनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तस्वीर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपए का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इसमें शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की काउंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: कल हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सर फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और

0: सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नौ मुंतखबा कानून साजरकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महास की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य एच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में नौ मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलएज को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित कर। आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इन्हेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दोगुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताजा तरीन तजवीज के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाजे को खत्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाजे के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाजों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुजाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नजर

0: से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरों को खत्म करने की जरूरत से इतफाक किया, जो मुजाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम जखीरे पर करीबी नजर रख रहा है। न्यूज डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के AFC एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने यह बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और TVK के सरबरा विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरक तौर से नुमाया है। रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, TVK चीफ के अलावा 9 दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफ बरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबिना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबिना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जरे मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे, वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्वा सरमा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और 56 सेकेंड म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह मंच पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर

0: और भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और राजस्थान में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने असम, मेघालय, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work-from-home practices. The remarks come against the backdrop of record-high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal comes at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
3: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv today, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling at Somnath Mahadev Temple in Gujarat. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual, and later

9:10 हो चुके हैं। खट्टा मीठा से शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मंडे मन लगाकर काम करने का दिन होता है। इसके ऊपर सैटरडे संडे का एक भारी, यूं कहें कि प्यारी सी याद भी बनी रहती है, लेकिन अपने आप को हम कहते हैं चलो उठो और दौड़ो।

कहते हैं कहने वाले कि जो पहले कहानी होती थी ना उसका असर बहुत ज्यादा होता था। ये और बात है कि कहानियां कम होती थी, लेकिन अब कहते हैं कि कहानी बहुत ज्यादा है और उसका असर उतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। अब इतना तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि बहुत पुरानी वाली कहानी खरगोश और कछुए की अभी तक चली आ रही है। जनरेशन टू जनरेशन वो इसी तरह से पास इट ऑन होती रहती है और उसका असर कब बेअसर होगा ये हम कह नहीं सकते। फिलहाल हम ये जरूर आपको बता सकते हैं कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदलकर ऑल इंडिया रेडियो बनने के बाद 2026 में अपनी स्थापना के 90 शानदार वर्ष पूरे कर रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ ये देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारक के रूप में 99% से भी ज्यादा आबादी तक लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में सेवा दे रहा है। तो आज हम आपसे पूछेंगे, विविध भारती सबने सुना होगा, तो उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत किस कलाकार का था? सोचिए और बताइए fmgoldairdelhi@gmail.com पे, और उसके बाद हम आपके लिए यही कहेंगे कि आप लाजवाब हैं।

लेकिन सचमुच में आपने पता है लाजवाब कर देते हैं, हमने इधर सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आपने भेज दिया fmgoldairdelhi@gmail.com पे, और हम आपका नाम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी तो इस सवाल का जवाब ढूंढे और हमें बताएं कि भाई क्या है। और फिलहाल अजब गजब की जब बात हो ही रही है तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि घर बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है घर से बाहर निकलना। जब हम घर में होते हैं तो बोर होते हैं, मेंटली थोड़े से थक जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, और उसके बाद लगता है कि भाई क्या करें, घर में रहें या फिर घर से बाहर निकलें। और ये अजब गजब चीजें यूं ही चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दिल को मनाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो सब की सब हमें इतनी अच्छी लगती।

हैं कि कभी बालकनी में जाते हैं और कभी दूसरी बालकनी में जाते हैं, कभी नीचे देखते हैं तो कभी ऊपर देखते हैं, और इस तरह से मन बहल जाता है। और बाकी रही गानों की बात, तो वो आप रहेंगे हमारे साथ।

अब बाहरों का जिक्र हुआ है तो फिर क्यों ना हम मौसम की बात कर लें। तो फिर राजधानी दिल्ली में 11 और 12 मई को बारिश का येलो अलर्ट हो गया है जारी। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई तक मौसम थोड़ा सा आरामदायक बना रहेगा।

इसके बाद गर्मी का एक लंबा दौर शुरू हो सकता है जिसमें लू भी लौट के आएगी। और इन सब के लिए अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो फिर कर लीजिए। और आप इसी तरह से हमें जवाब भेजते रहिए। जिनका जवाब पहली बार आया है ना, सही जवाब, उनको हम जरूर लेंगे, शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन कुछ जवाब हमारे पास गलत आ रहे हैं तो उनको हम नाम जरूर ले देंगे। और कुछ हमारे पास ऐसे भी मेल आ रहे हैं जो अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये हमको बताना है कि हमने आपसे पूछा कि भाई उद्घाटन के दिन विविध भारती पे प्रसारित होने वाला पहला गीत किसका था, किस कलाकार ने गाया था, उनका नाम बताइए, क्योंकि हम मना रहे हैं स्थापना आकाशवाणी दिल्ली जो कि 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदल के ऑल इंडिया रेडियो बनने के बाद अब ये अपने पूरे 90 साल शानदार पूरे कर रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने आपसे सवाल पूछा जिसका जवाब आप देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। तो इसी तरह से आप लगे रहिए, बताते रहिए और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल्ली आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

और कई बार पता है हम अजनबियों से बहुत बातें करते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमें जज करेंगे नहीं, जितनी चाहे उतनी बातें करते रहो और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। और कई बार जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनसे बातें करते हुए हमें थोड़ी सी उलझन होती है, तो इस उलझन को सुलझाइए। कैसे, इसका जवाब भी आप ही के पास होगा। यह है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और ये है आप वाला गाना।

लेकिन तब नहीं रुकना जब आपका मन करे कहीं घूमने के लिए। तो फिर क्या आपने ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह में आप गए शिरकत की, जो शुरू हो गया है 8 मई को और ये चलेगा 14 जून तक। अभिमंच एनएसडी में चल रहा है और जाइए, शाम को 7 बजे शुरू हो जाता है। जा करके देखिए तो सही कौन सा नाटक है, कहीं ये वही वाला नाटक तो नहीं जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि हमें जाना है और देखना है। तो फिर ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कैलेंडर में, डायरी में, फोन में या फिर अपने मन में कि ये हमें ज़रूर ज़रूर मंडी हाउस जाकर के इसको देखना है। शाम 7 बजे से शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि अफ्रीकी सांस्कृतिक विरासत का होगा संगम, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अफ्रीकी ताल और भारतीय सुर दिल्ली वालों के बीच में एक खास शाम आने वाली है। दिल्ली में भारत और अफ्रीका की सांस्कृतिक विरासत का संगम 23 मई को सुर और लय प्रेमियों के बीच में होगा। 23 मई को भारत मंडपम में इंडिया अफ्रीका डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल होगा, जिसमें भारत और अफ्रीकी देशों के कलाकार संगीत, डांस और बहुत सारी लोक परंपराओं के साथ हम सब के बीच में होंगे। तो ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए, काफी लंबे समय तक आपके साथ साथ बना रहेगा। फिलहाल तो आप एंजॉय कीजिए, 90 साल आकाशवाणी के साथ लाजवाब है। म्यूजिकल दिल्ली आपके और हमारे साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

इसीलिए कहते हैं कि सवालों से ना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल कई बार हमें हैरान करते हैं तो कई बार हमें जोड़ते हैं। 90 साल आकाशवाणी के साथ लाजवाब रहे। तो मैं आपको बताऊं कि 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने बॉम्बे यानी कि मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं को मनोरंजन और सुगम संगीत का एक ऐसा मंच प्रदान किया कि बस पूछिए मत, और आज तक हम इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भोले बिसरे की जयमाला और छायागीत जैसे बहुत ही फेमस कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त जैसे सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। तो इसी से जुड़ा हुआ हमने आपसे सवाल पूछा कि उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत किस कलाकार का था, और आप हमें जवाब दे रहे हैं, मैं पढ़ रही हूं, और बहुत सारे जवाब हमारे पास इसी तरह से आएंगे। fmgold@gmail.com पे आप हमें भेजते रहिए और अपनी बात बताते रहिए। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में, जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो ग्रामीण और शहरी गरीबों के कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों SHGs के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाने और गरीबी कम करने पर केंद्रित है। ये योजना ग्रामीण शहरी के तहत कौशल प्रशिक्षण, कम ब्याज पर ऋण और रोजगार की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के बारे में और विस्तार से आप पढ़िए और देखिए कि यह आपके किस तरह से आपको काम आ सकती है। और आपके लिए ये रहा गीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:45 और 35 सेकंड।

म्यूजिकल दिल्ली के मितवा, आपने हमें जो जवाब भेजा fmgoldeirdaily@gmail.com पे हमें मिल गए हैं। कुछ लोगों ने अपने टेलीफोन नंबर भी भेजे हैं, जाहिर है क्योंकि हम उनसे बात करेंगे। लेकिन टेलीफोन नंबर भेजने के बाद आप अपने फोन्स को प्लीज फ्री रखिए ताकि जब भी हम चाहें आपसे बात कर सकें। मैंने ट्राई किया, आपका नंबर वो जा रहा था बिजी। और हमारा जो सवाल था वो था कि विविध भारती की जब उद्घाटन हुआ तो फिर सबसे पहला गीत किस कलाकार का उस वक्त चला था, तो वो नाम है मन्ना डे। गाना था नाचे रे मयूरा, वो तो मैं नहीं प्ले कर रही, जो प्ले कर रही हूँ वो है फिल्म बहारों के सपने का, जो आई थी फिल्म 1967 में। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता। और इसके साथ ही

नवीन भाटिया, आशीष कायकर, कुछ लोगों ने खराब तो नहीं कहूंगी, थोड़े से अलग अलग जवाब दिए हैं, जैसे कि ठीक है आपने कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए 90 साल आकाशवाणी के साथ, जो हमारा ये जश्न है वो उसमें आप शामिल रहिए।

तो फिर आपको अपने आप को बचाना है कैसे गर्मी से। बहुत सारे हम ऐसे आइडियाज लेकर के आते हैं, तो एक आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मैंने हाल ही में देखा कि शादी बारात में जो सड़क पे लोग चलते हैं तो वो साथ में कूलर भी लेकर के चल रहे थे ताकि बाराती रहें कूल और हो शादी में उनका जो मनोरंजन भरपूर। ऐसे ही एक मैंने बड़ा अच्छा आइडिया देखा गर्मी से बचने के लिए चाइना में, जब लोग कमल की पत्तियों को अपने मुंह पे मास्क की तरह यूज कर रहे थे। सिंपल आइडिया है, काफी इको फ्रेंडली है। तो इस तरह की चीजें आपदा में अवसर हम सब ढूंढते रहते हैं और कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर निकाल के लाते हैं कि कैसे इन सब चीजों से हम बचें। तो फिर आप भी बचिए। आने वाली जो 2-3 दिन का मौसम है उसको तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो गर्मियां आएंगी उसमें अपना ध्यान रखिएगा। हर घूंट में सेहत का सीक्रेट छुपा रहता है, इसलिए नेचुरल चीजों के साथ अपने आप को बांध के रखिए। तो फिर चल दिए आप अपने ऑफिस।

जब भी निकलें अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर के निकलें, जैसे कि पानी की बोतल है, टोपी है, सर पे रखने के लिए कोई कपड़ा है, और अपना पानी अपने साथ लेके चलिए तो फिर अच्छा रहेगा। आप कहेंगे भाई इतनी सारी बातें आप हमें बोलती रहती हैं, क्या करें, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ याद दिलाने की, तो ये वही है याद दिलाना। म्यूजिकल दिल्ली आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मैं तो चली, अरे अभी बस अभी आई, और वक्त हो रहा है ये समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे

0: कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for a revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
2: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirling, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. US President Donald Trump has warned that the United States will target any Iranian trying to reach the country's highly enriched uranium, saying that the nuclear material is under constant surveillance by the US military. In a televised interview, Trump appeared to play down the significance of uranium, which is believed to be buried under the rubble of nuclear facilities remaining in Iran for now. Iran's highly enriched uranium is one of the major sticking points between Washington and Tehran in ceasefire negotiations to end the 10-week U.S.-Israel war on Iran. U.S. President Donald Trump will pay an official visit to China from May 13th to 15th at the invitation of Chinese President Xi Jinping. This will be the first visit to China by a U.S. president in almost 9 years. The visit comes in midst of a prolonged U.S.-Israel-Iran war crisis over the blockade of Strait of Hormuz, causing global energy crisis. Indian equity markets fell down today with benchmark indices declined 1% each in early trade after the US and Iran failed to reach an agreement on a peace proposal related to the West Asia conflict. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in Raipur last night. Earlier in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: Namaskar. Akashvani se Vishwa Darpan ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित और उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने और स्थानीय उत्पादों की खरीद को वरीयता देने की अपील की।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
3: प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का भी आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
1: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: इस बीच सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के क्षेत्रों और समुद्री सीमा को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है और खाड़ी देशों की सुरक्षा के प्रति फिर से समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कल कुवैत पर ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की थी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये आतंकी हमले कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये राजनयिक प्रतिक्रिया कुवैत के रक्षा मंत्रालय की उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले शत्रु के कई ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की गई थी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा कि दोनों भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें नीदरलैंड्स भेज दिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कोस्टारिका के विदेश मंत्री मैनुअल तोवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि बैठक के दौरान भारत कोस्टारिका द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और कोस्टारिका बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के मामले में समान मूल्यों को साझा करते हैं। रूस ने कहा है कि वो नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिक नाटो के समर्थन वाली सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड के दौरान विशेष सैन्य अभियान में शामिल रूसी सैनिकों की भी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अमरीकी प्रशासन की प्रमुख उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे। उन्होंने इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशिया

0: फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 33 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने, 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकंगनवा, मई तेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट होकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जमानत पर रिहा कर उनकी सजा निलंबित कर दी गई है। 54 वर्षीय नरगिस ने 2023 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और मृत्युदंड को समाप्त करने के अभियान के लिए जेल में रहते हुए ये पुरस्कार जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित, उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

देश की अटूट आस्था और हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, जो आज कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनेगा। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह महोत्सव हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। इस दौरान मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। समंदर किनारे सदियों से अधिक आस्था है ये सोमनाथ मंदिर। भक्ति, भव्यता और भारत का स्वाभिमान है, जो बार बार टूटा लेकिन हर बार और भव्य होकर उठा। सोमनाथ मंदिर, यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:37 और ठीक 40 सेकंड।

आज इस उत्सव में सब लोग शामिल हैं। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है। 150 फुट ऊंचा शिखर अरब सागर के किनारे दिव्य ज्योति की तरह है। सोमनाथ जहां इतिहास भी नतमस्तक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ भारत की अटूट आस्था और शाश्वत विरासत का प्रतीक है, पवित्र प्रतीक माना जाता है। महादेव का ये दिव्य धाम एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बता पाना असंभव है। और विलक्षण संयोग है कि जनवरी में सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 वर्ष पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा और हम सब उस वक्त के साक्षी बनेंगे।

जनवरी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री दादा सोमनाथ के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और आज के इस उत्सव को लेकर हम सब में गजब का उत्साह देखते ही बन रहा है इस वक्त।

सोमनाथ विरासत के 75 साल इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनेंगे हम सब। सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।

सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा करेंगे पीएम। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल। जनवरी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद दूसरी बार करेंगे ये विशेष पूजा अर्चना। सोमनाथ से दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब उनके साथ हैं और एक उत्साह जो इस वक्त सबके दिल में वो देखते ही बन रहा है। 11 बजने वाले हैं, अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटक

0: मृतकों की मौत हो गई। चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से पांच गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is participating in the Somnath Amrit Parv 2026. Marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow is also being organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and an auditorium. Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
2: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Hemant Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow.

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2020.

0: 1976. And Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं, वहां पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया,

0: तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ तीर्थ व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स। एंड टुडे The 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals.

विष्णुरा विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्च।

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैक।

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैक।

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य

0: रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या हैं? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of Rs. 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate, and on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran.

0: acrobatic team, and early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में, गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के, पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
0: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
1: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थ

0: भारतीय वायुसेना के जो यान है विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी जो विरासत है उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951 एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन

0: Christian said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy. It has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधाएं रहे, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में, या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है. और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर में. इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
2: लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held

0: वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: In Himachal Pradesh, six tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. Four others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, five were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
3: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाए, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाए। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय

0: भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुईदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब

0: आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए, जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया। दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप मयोभवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show the Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea

0: करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं। तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे। और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं। और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से, आयोजन और भी भव्य है। और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
1: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीशीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोहटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू। समग्र देश अने दुनिया की नजर जे राज्य की चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडीचेरी में पण विकास की राजनीति ने मड़ेला प्रचंड जन समर्थन शिल्पी यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवू छू। भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियोंथी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवन प्रतीक छे। आपणी आस्था ना अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी वधु तेजस्वता साथे उभू थयुं छे। आजे आ दिव्य मंदिर विध्वंसमांथी पुनर्निर्माणना सरदार साहेबना अड़ग निर्धार दृढ़ संकल्प अने राष्ट्रना आत्मसन्माननु प्रतीक छे। तेमनो आ संकल्प 1951 नी 11 मे पूर्ण थयो ते गौरवशाळी विरासत ने आजे 75 वर्ष थया छे। आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदीए 2001 मा मुख्यमंत्री तरीकेनु सेवादायित्व संभाळ्यु, एज वर्षे तेमणे सोमनाथ मंदिरना पुनर्निर्माणनो सुवर्ण जयंती उत्सव उजवीने आपणने तक आपी हती। अने आजे सरदार साहेबनो दृढ़ संकल्प साकार थयानो आ अमृत उत्सव आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेबनी प्रेरणाथी देशनी आजादीना अमृतकाळमां ज आव्यो छे ते सोनामां सुगंध समो प्रसंग छे। आखा युगनुं निर्माण करनार विजनरी लोकनायक श्री मोदी साहेबे प्रत्येक भारतवासीओमां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अने सनातन हिंदू संस्कृतिना पुनर्जागरणनो भाव प्रकट प्रबल बनाव्यो छे। आदरणीय श्री मोदी साहेबे अयोध्यामां राम मंदिरना प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रसंगे देशथी देवथी देशनुं विजन आप्युं हतुं। सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पहेला थयेला आक्रमण सामे शौर्य दाखवनार स्वाभिमानी योद्धाओने याद करतुं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, काशी विश्वनाथ कोरिडोर, केदारनाथ धाम विकास, पावागढ़मां 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण अने अंबाजी कोरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्युं छे। अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरातमां आव्या छे त्यारे फरीथी एमनुं स्वागत करीने विरमुं छुं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
2: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath Corridor, the Shri Ambaji Temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Shri Ram Lala Temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and also the stamp has been now इस विषय पर विशेष रिलीज

0: By the Honourable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होंगी।
0: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना

रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख
समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुछ ही प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति

की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा।

विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में

प्रज्ञा दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विलंब ना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र

0: मठ मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि फिल्मों के सेट्स पर फिल्में बनती हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती बल्कि कभी कभी तकदीरें भी बन जाती हैं, बदल जाती हैं। ऐसे किस्से कहानियां आपने बहुत सुने होंगे कि फला सेट पर कोई लड़की या लड़का शूटिंग देखने आया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसे पसंद कर लिया, फिल्म में काम दे दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था एक जानी मानी एक्ट्रेस के साथ भी। जब वो अपने माता पिता के साथ फिल्म के सेट पर पहुंची, शूटिंग देख रही थी, तो उसके आगे बताऊंगी आपको। पहले जिनकी मैं बातें कर रही हूं, उन पर पिक्चराइज किया एक बहुत ही मशहूर गाना, कहीं न जाना, सुनते रहना आकाशवाणी एफएम गोल्ड।

मुझे छोड़ दिया जाए क्योंकि मुझे बहुत सारे गाने सुनाने हैं जो कि लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए, और कुछ ऐसे गाने भी सुनाऊंगी जिनमें लक्ष्मी छाया तो नजर नहीं आई है लेकिन इस फिल्म में उनकी छाया थी, यानी कि इस फिल्म में उन्होंने काम किया था। फिलहाल आपने सुना मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जो कि फिल्माया गया था लक्ष्मी छाया पर। साथ में नजर आए विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और आशा पारेख। इस गाने के तो डायलॉग भी बन चुके हैं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, है ना, बोलते हैं ना हम आज तक इस गाने के बारे में, इस डायलॉग को बोलते रहते हैं हम। दोस्तों लक्ष्मी छाया इतनी ज्यादा मशहूर थी एक जमाने में कि उन पर जो गाना फिल्माया जाता था उस गाने की चर्चा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिल्म से भी ज्यादा कभी कभी उस गाने की चर्चा हो जाया करती थी। जैसे कि मेरा गांव मेरा देश फिल्म में उन पर कई गीत फिल्माया गया और सारे के सारे चर्चित रहे। और ये जो गाना मैंने आपको सुनाया ये तो था ही बेहद लोकप्रिय, आज भी इसे लोग पसंद करते हैं, खूब सुनते हैं, और आपको उनका नृत्य भी बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों लक्ष्मी छाया हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी और उन्हें खास तौर से याद किया जाता है उनके जबरदस्त डांस के लिए। आज उन फिल्मों के गाने होंगे जिनमें लक्ष्मी छाया ने काम किया है, और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो शायद आप उनके बारे में जानते हैं और शायद आप उनके बारे में ना भी

रात और दिन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो कि फिल्माया गया था लक्ष्मी छाया पर। अगर आपने ये गाना देखा होगा तो आपको बहुत पसंद आया होगा। उनका नृत्य कितना प्यारा, डांस करती हैं लक्ष्मी छाया। और दोस्तों, आजकल की जो हीरोइंस हैं ना, उनमें भी इतना दम नहीं है। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो डांस किया करती थी कि बस देखने वाले हैरान रह जाते थे। दोस्तों, लक्ष्मी छाया का फिल्मों में आना महज एक इत्तेफाक रहा। लक्ष्मी छाया का फिल्मों से कोई भी नाता नहीं था दूर से दूर तक। बस उनके माता पिता फिल्में देखने के शौकीन थे और कभी कभी उन्हें सेट्स पर ले आया करते थे शूटिंग देखने के लिए। अब ये साल 1956 की बात है। फिल्मकार महेश कौल अपनी फिल्म के लिए एक स्कूल गर्ल की तलाश में थे और फिल्म के सेट पर मौजूद थे। एक दिन उनके सेट पर लक्ष्मी छाया अपने माता पिता के साथ शूटिंग देखने पहुंची और जैसे ही उनकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ी, उनकी तलाश जैसे पूरी हो गई। महेश ने तुरंत लक्ष्मी के माता पिता को मना लिया और कहा कि भाई, आपकी बेटी को मैं अपनी आगामी फिल्म तलाक में लेना चाहता हूँ। माता पिता ने हाँ कर दी और इस तरह से लक्ष्मी अचानक ही फिल्मों के सेट से सीधी फिल्मों में आ गई।

धीरे धीरे नहीं, मैं तो जोर जोर से आपको बताऊंगी बोलकर कि आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में आपने ये गाना सुना, राम और श्याम फिल्म से। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं लक्ष्मी छाया की, जानी मानी अभिनेत्री और सबसे ज्यादा जिन्हें जाना जाता है उनके डांस के लिए। दोस्तों, अपनी पहली फिल्म को क्रेडिट न मिल पाने की वजह से थोड़ी सी उदास थी लक्ष्मी छाया, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में काम किया था और इसमें वो बहुत ही जरा सी देर के लिए नजर आई थी। फिल्म का नाम था तलाक। ये 1958 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म पूरे तीन साल बाद आई, नाम था नॉटी बॉय। इसमें लक्ष्मी ने बेला नाम की लड़की का किरदार निभाया था। लक्ष्मी को जो बड़ी पहचान मिली वो मिली गुमनाम फिल्म से। ये फिल्म बहुत ही खास रही लक्ष्मी के करियर में। इसमें उन पर एक बड़ा ही अनोखा सा गाना फिल्माया गया जो कि उनकी पहचान बन गया। इस गाने में वो मास्क लगाकर एंट्री करती हैं। अगर आपने ये गाना देखा हो तो आप समझ सकते हैं मैं कौन सी एंट्री की बात कर रही हूँ। वो मास्क लगाकर आती हैं अपने कोरियोग्राफर हरमन बेंजामिन के साथ, और इस गाने में लक्ष्मी छाया ने बेहतरीन डांस किया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा शानदार रही दोस्तों कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी लक्ष्मी के फैंस की जो तादाद है वो हजारों लाखों तक पहुंच गई थी। अखबारों में तो यहां तक लिख दिया गया था कि

उस जमाने में कोई भी दूसरा एक्टर इतनी एनर्जी और इतनी ग्रेस के साथ डांस नहीं कर सकता जितनी एनर्जी और ग्रेस के साथ बेंजामिन और लक्ष्मी छाया ने डांस किया था इस गाने पर। तारीफें बहुत हो गई हैं गाने की, चलो गाना सुनाती हूँ आपको।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मी छाया पर फिल्माया गया ये गाना गुमनाम फिल्म से आपने सुन लिया है। दोस्तों ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी और ये जो दौर था ये था हेलन का। जी हाँ, जब लक्ष्मी छाया ने फिल्मों में कदम रखा दोनों को ही डांसर के तौर पर पहचाना गया, लेकिन हेलन का जो रुतबा था वो बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल मुख्य अभिनेत्री की तरह। ऐसे टफ कंपटीशन में भी लक्ष्मी छाया ने अपनी पहचान बनाई। कई फिल्मों में उनके डांस नंबर्स मशहूर हुए, जैसे कि नॉटी बॉय, रॉयल मेल, ब्लफ मास्टर, गुमनाम, तीसरी मंजिल और राम और शाम। इसके अलावा भी कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें लक्ष्मी छाया को नृत्य के अलावा एक्टिंग के लिए भी सराहा गया। अब मैं आपको एक ऐसी फिल्म से गाना सुनाने वाली हूँ जिस फिल्म में हेलन और लक्ष्मी छाया दोनों नजर आई हैं। बस फर्क ये रहा कि हेलन के ऊपर बहुत ही मशहूर एक गाना फिल्माया गया और लक्ष्मी छाया का जो कैरेक्टर था वो इस फिल्म के लिए मशहूर हुआ। तो सुनते हैं ये गाना तीसरी मंजिल फिल्म से।

0: छिप गया है वो परवाना, ढूंढती हूँ।
1: दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गाने में पर्दे पर नजर आए शम्मी कपूर और हेलन, और इस फिल्म में मीना का बहुत ही प्यारा सा किरदार निभाया था लक्ष्मी छाया ने, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। तो दोस्तों, तीसरी मंजिल, आया सावन झूम के और रास्ते का पत्थर, ये कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें लक्ष्मी छाया के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया। अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र मैं जरूर करने वाली हूं जिसका नाम लिए बिना लक्ष्मी के करियर की जो कहानी है वो अधूरी रहने वाली है। जी हाँ, लक्ष्मी छाया के करियर की एक बहुत ही खास फिल्म मानी जाती है मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में उन्होंने मुन्नी बाई का किरदार निभाया था। उन पर कई गाने फिल्माए गए थे, जी हाँ कई गाने, और इनमें से जो दो गाने थे वो बहुत बहुत ज्यादा मशहूर हुए। पूरी फिल्म में मुन्नी यानी कि लक्ष्मी छाया जो है ना वो छाई रही। मेरा गांव मेरा देश 1971 में रिलीज हुई थी और इसके बाद लक्ष्मी के करियर में बड़े बदलाव आए।

0: तो दोस्तों, ये था लता मंगेशकर की आवाज में मेरा गांव मेरा देश फिल्म से गाना। लक्ष्मी छाया पर ये फिल्माया गया था और लक्ष्मी छाया को एक बेहतरीन डांसर के अलावा सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल्स के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने संपूर्ण करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक आम से परिवार से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी ने फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप जुड़े रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के दौरान महापूजा की और कुंभ अभिषेक की रस्म अदा की। वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नजरिए को तरगीब मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए वजीरों की गैर रस्मी बाख्तियार ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। मरकज ने विकसित भारत जीराम जी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है और अगले माली साल में शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खसूसी महापूजा की। जनाब मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक रस्म अदा की। मंदिर की तारीख में पहली मर्तबा 11 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इस्तेमाल करते हुए मंदिर के शिखर पर जल अभिषेक किया गया। जनाब मोदी ने परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। इस दौरान भारतीय फिजाइया ने एयर शो का अहतमाम किया, जिसमें सूर्य किरण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में शानदार फिजाई करतब का मुजाहिरा किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टरों से मंदिर के ऊपर फूल बरसाए गए। इसके बाद जनाब मोदी खसूसी नुमाइश देखने गए। सोमनाथ मंदिर की तामीरों के अफ्तताह के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पुख्ता अकीदे रूहानियत और मुल्क की दायमी रूह की एक पवित्र अलामत के तौर पर कायम है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व माजी का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये आइंदा 1000 बरस के लिए मुल्क की तहरीक का बायस है। वो गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर आवाम से खिताब कर रहे थे।
2: पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है।
1: वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि एक मुल्क उस सूरत में ही मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से मरबूत रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को न झुका सकती है न दबा सकती है। उन्होंने कहा कि 11 मई को पहले 3 न्यूक्लियाई तजुर्बे किए गए और मुल्क के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को भारत की सलाहियतों से बावर कराया। उन्होंने कहा कि इन तजुर्बात से दुनिया भर यह जाहिर हुआ कि मुल्क की सियासी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है।
2: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर की दायमी तहजीबी अहमियत और मजबूती को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के देरपा जज्बे को तकवियत पहुंचाते हुए सोमनाथ एक मंदिर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि खंडराज से आहिया तक इसके सफर से मुल्क के शानदार मजबूत विरासत और विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में मुल्क को मजबूत बनाने में साझेदार बने। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मुल्क के लोगों से सात अपीलें की। जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामदशुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर बचाने में मदद करें। वजीर आजम की अपील एक ऐसे वक्त सामने आई है जब मगरबी एशिया बहरान और आबनाए हुरमुस में तातुल जारी रहने की वजह से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चल रही हैं। गुज़श्ता महीने के आखिर में खाम तेल की कीमतें $126 फी बैरल तक पहुंच गई थीं, जो पिछले 52 हफ्ते में सबसे ज्यादा है।
2: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: वजीर आजम ने वर्क फ्रॉम होम के सिलसिले को बहाल किए जाने की जरूरत भी उजागर की। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो खुरदनी तेल का इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुल्क के बाहर से मंगाई गई कीमियावी खाद पर इन्हिसार कम करें। वोकल फॉर लोकल तहरीक को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए खुद किफालत और नामियाती खेती बाड़ी जरूरी है।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहद पर बाड़ लगाने के लिए आरजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जमीन की मुंतकली का अमल पीर से शुरू हो जाएगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव के बाद मगरबी बंगाल में नई सरकार की तश्कील के बाद आज काबीना की पहली मीटिंग में यह फैसला किया गया। जनाब अधिकारी ने रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम नीज मरकजी सरकार की कई दीगर स्कीमें नाफिज करने का भी ऐलान किया।
3: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है, वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल की निगरानी के लिए तश्कील करदा बाख्तियार वजरा के गैर रस्मी ग्रुप की एक मीटिंग की आज सदारत की। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मरकज ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है। इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में इसका इतलाक होगा। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि यह कानून जिसके तहत हर माली बरस में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, देही भारत को बाख्तियार बनाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद मुल्क की मईशत मजबूत है। इसमें माली साल 2026-27 के दौरान मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले हजार साल के लिए मुल्क के नजरिए को तरगीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया को 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर बाढ़ लगाने के लिए आराजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। मरकज ने विकसित

0: The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महा

0: देव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर

0: की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की

मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम उन्नत किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती
1: और मैं हूं रजनीश।
0: बिल्कुल, हम दोनों लेकर आए हैं ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपके बिल्कुल फायदे की बात होने वाली है हमारे किसान मित्रों, क्योंकि आज हम बात करेंगे धान के बारे में, कैसे आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ उर्वरक प्रबंधन वगैरह जो भी आपकी जरूरत की चीजें होती है धान की खेती करने के लिए, उन सारी बातों पर आज चर्चा होने वाली है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए, धान बड़ी हमारी मुख्य फसल है जिसपे बहुत जो हमारे किसान भाई बहन है काफी बड़े वर्ग पर इस धान की खेती करते हैं, तो बहुत जरूरी है। और हम हमारे जो कहते हैं ना कि आहार भी धान, जो चावल है वो मुख्य आहार है, तो ऐसे में धान की फसल में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या करना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी विषय है जिससे हमारे जो किसान भाई बहन है उनको हम रूबरू कराते हैं और विशेषज्ञों को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं।
0: तो बिल्कुल बता देते हैं कि आज हमारे साथ कौन से विशेषज्ञ जुड़े हैं। आज हमारे साथ

0: धन्यवाद।
1: और साथियों आपको बता दें कि धान के बारे में, धान की खेती के बारे में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन इन प्रोग्राम है तो आपकी शिरकत, आपकी बातें, उसका जवाब ढूंढना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फोन नंबर नोट करें आप, 011 दिल्ली का स्टडी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल कर सकते हैं 2342108 1, एक और फोन नंबर है 2342108 3, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब तक आते हैं हमारे कॉलर्स के, किसान मित्रों के फोन कॉल्स आना शुरू होते हैं, उनके प्रश्न शुरू होते हैं, हम अपने प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं।

0: धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो ये और नर्सरी प्रबंधन तैयार करना, ये चीजें दोनों धान की खेती में कितना महत्व रखती हैं और किस तरह से अलग है?
1: जी बिल्कुल, देखिए धान को जब हम स्थापित करते हैं अपने खेत में तो शुरुआत में हर किसान ये चाहता है कि उसका अंकुरण फसल का अच्छा हो, पौधों का जमाव ठीक से हो और साथ ही साथ उसकी जो पौधों की संख्या है वो उचित होनी चाहिए। धान को मोटे तौर पे दो तरह से स्थापित किया जाता है कहीं भी दुनिया में, हमारे देश में भी। एक तो होता है कि सीधे उसकी बिजाई कर दी जाए और दूसरा ये है कि पौध उगाकर यानी नर्सरी तैयार करके फिर उसकी रोपाई की जाए। तो जैसे हम रोपाई करते हैं तो उसके लिए नर्सरी प्रबंधन का सही समय आ रहा है, अब धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि शुरुआत में हमारे पौधे जो होते हैं नर्सरी के, जो सीडलिंग होते हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए। अगर ये पौधे स्वस्थ होंगे तभी मुख्य खेत में जब हम रोपाई करेंगे तब हमारे जो है फसल अच्छी होगी, उसमें ब्यांत अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें अंकुरण अच्छा हो और साथ ही साथ उसमें भी ब्यांत अच्छा चाहिए। और इसमें जरूरी है कि सही समय पर आप सीधी बिजाई करें, सही समय पर नर्सरी की पौध लगाएं और साथ ही साथ बुआई ढंग से करें, और इसके अलावा जो फसल की देखभाल है वो भी आपको प्राथमिकता पे करनी चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की सीधी बिजाई की, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सीधी बिजाई क्या होती है और इसको अपनाने की आवश्यकता क्यों है?
1: जी जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने जैसे दो बातों की बात की, एक तो सीधी बिजाई है, एक पौध तैयार करके धान को लगाना। तो जो हम पौध तैयार करके धान को लगाते हैं इसमें दो तीन समस्या ज्यादा आ रही हैं। पहली समस्या यह है कि इस विधि से जब हम धान उगाते हैं तो इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, यानी मोटे मोटे अनुमान में अनुमान लगाया जाए, किसान जानते हैं 3,000 से लेकर 5,000 लीटर पानी प्रति किलोग्राम धान जो हम पैदा करते हैं तो लगता है। आप समझिए 1 लीटर पानी की कीमत क्या है, 10 रुपए लीटर कम से कम मान लीजिए, तो बहुत महंगा पड़ता है धान हमें उगाना जो हम परंपरागत विधि या रोपाई विधि से उगाते हैं। अगर हम इसको सीधी बिजाई से उगाते हैं तो इसमें पानी काफी कम लगता है, एक तो पानी की इसमें बचत होती है, दूसरे जब हम रोपाई करते हैं तो पौध हमें उखाड़नी पड़ती है और फिर उसकी रोपाई करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज्यादा श्रमिक लगते हैं और साथ ही साथ ये एक तरह से मानवीय मूल्यों के प्रति जो है वो अच्छा नहीं है, खास करके क्योंकि कोई मजदूर है वो दिन भर कमर नोड़ के जो है उसको धान की रोपाई करनी पड़ती है, कमर में दर्द हो सकता है, धूप में उसके जो है कई तरह की समस्याएं जो स्वास्थ्य संबंधी इशू आ सकते हैं, और तीसरा इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि पडलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इन्हें श्रमिकों की शॉर्टेज है, दूसरा पानी की अधिकता इसमें लगती है और तीसरा जो है हमें एनर्जी जो ऊर्जा है उसका उपयोग भी इसमें ज्यादा होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जरूरत है के रोपाई विधि का एक विकल्प खोजा जाए और जो सीधी बिजाई है वो एक अच्छा विकल्प है। इसमें रोपाई विधि में जो जो हमारा सीधी बिजाई है ये अच्छा विकल्प है और इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हम उसमें सूखे खेत में करते हैं बुआई सीधी बिजाई, एक करते हैं गीले खेत में। सूखे खेत में पहले हम पलेवा करते हैं फिर खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के बाद उसमें सीधे बिजाई कर देते हैं। दूसरा होता है गीली क्यारी विधि, इसमें हम पडलिंग करते हैं और गारा बनाते हैं, उसके बाद ड्रम सीडर एक मशीन आती है उससे हम सीधी बिजाई कर देते हैं, कहीं कहीं पर छिटकवा विधि से भी उसकी बुआई की जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये सवाल उठता है कि आपने कहा कि सही समय पर कर देते हैं, तो सही समय का अनुमान कैसे लगाएं कि धान की सीधी बुआई करनी है तो कौन सा उपयुक्त समय होगा और किसानों को अब ये कब तक कर देनी चाहिए?
1: निश्चित तौर पर जो हम नर्सरी की बुआई की बात करें या सीधी बिजाई की बात करें तो इनका जो बुआई का समय है कुल मिलाकर लगभग 7-7 चलता है, ऐसे समझ सकते हैं हम किसान भाई। जब हम नर्सरी में बुआई करते हैं तभी हमारा लगभग सीधी बिजाई का समय भी होता है। नर्सरी की बुआई या सीधी बिजाई हम 25 मई के बाद शुरू कर सकते हैं और खास करके जून का पहला पखवाड़ा ये नर्सरी की बुआई और हमारे सीधी बिजाई के लिए काफी उपयुक्त होता है। हालांकि किस्मों पर निर्भर करता है लेकिन मोटे तौर पर अगर हम समझें तो जून का जो पहला पखवाड़ा यानी 1 जून से 15 जून के बीच सीधी बिजाई हो जानी चाहिए और दूसरी तरफ जो नर्सरी लगाना चाहते हैं उनको नर्सरी लगा देनी चाहिए।
2: अच्छा, अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि अच्छी किस्में हों और अच्छी किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी होता है, और लेकिन वो अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अच्छी किस्में कौन सी हैं?
1: जी बिल्कुल, देखिए दो कंडीशन होगी आज की हमारी चर्चा में, एक तो रोपाई विधि से आपको लगाना है जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में या संकर किस्में लगाई जाती हैं, और दूसरा सीधी बिजाई हम करते हैं उसमें भी ज्यादातर अधिक उपज देने वाली किस्में लगाई जाती हैं।

0: लेकिन किस्में आमतौर पे अलग अलग होती हैं। अगर हम सीधी बिजाई की बात करें तो पंजाब के लिए PR-126, PR-131 और PB-1979 और PB-1985, ये पूसा बासमती है, पीबी का मतलब पूसा बासमती 1979 और पीबी पूसा बासमती 1985, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं जो सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। और ये इमेजा था पायर एक हर्बिसाइड होता है, एक रसायन होता है, उसके प्रति ये रोधिता रखती है, यानी उसको अगर हम डालें तो खरपतवार मर जाते हैं और इन किस्मों पे कोई असर नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी किस्में हैं, पंजाब में लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा में पंजाब बासमती 1979, PR-126, PR-131 ये सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। और जो दिल्ली के किसान भाई सुन रहे हैं, NCR का क्षेत्र है हमारा, इसमें भी आप पीबी पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये दो किस्में उपयुक्त हैं। इसके अलावा मालवीय मनीला सिंचित धान 1, इसको भी हम सीधी बिजाई में लगा सकते हैं। और बिहार की बात करें तो सीआर धान 108, सीआर धान 808, सीआर धान 211, बहुत सारी किस्में हैं जो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए भी उपयुक्त हैं। तो ये मुख्य किस्में थी जो सीधी बिजाई में लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा रोपाई के लिए अगर हम बात करें तो पंजाब में रोपाई के लिए उपयुक्त किस्में CSR-108, HKR-49, PR-126, 131, 130, बहुत सारे नंबर हैं जो पंजाब में और हरियाणा में भी लगभग इसी तरह की किस्में CSR-30, सुरजीत बासमती 1, ये दो किस्में बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नमक वाली जमीनें हैं वो ज्यादा हैं, तो वहां पे साल्ट टॉलरेंट किस्में CSR-30 और सुरजीत बासमती 1 लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एक तो बहुत लंबी लिस्ट है किस्मों की, उसकी चर्चा करना मुश्किल होगा।
1: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े, उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो।
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े भी मित्र है छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना प्रश्न।
2: अभी जैसे अभी तो समय है, हम जानना ये चाहते हैं इसका बीजोपचार और जो सही टाइमिंग है बुवाई का, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल। देखिए, बीजोपचार आप नर्सरी के लिए कर रहे हैं या सीधी बिजाई के लिए बात करना चाहते हैं बीजोपचार? कोई बात नहीं, मैं दोनों का बता देता हूँ। जो किसान भाई सीधी बिजाई कर रहे हैं उनको बीजोपचार करना चाहिए, और सबसे आसान तरीका इसका यही है कि कार्बन डाइजिम या बावस्टीन जिसे कहते हैं, बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचार करें। जो आवश्यक मात्रा में बीज है आपका धान का, उसको ले लें, उसके बाद उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार दें, और ये जो दवाई है, दस्ताने पहनने के बाद इस दवाई को अच्छी तरह से उसमें बीज में आप मिला दें। अगर प्रमाणित बीज है तो उसके साथ आपको दवाई मिलेगी या उपचारित मिलेगा। दूसरी तरफ जो किसान भाई नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, उनके बीज उपचार के लिए सबसे पहले नमक का घोल आप बनाते हैं, नमक के घोल से बीज का उपचार करते हैं, उसमें जो हल्का बीज होता है वो ऊपर आ जाता है और भारी बीज नीचे बैठ जाता है। इसके बाद जो भारी बैठा हुआ बीज है, इसको हम कवकनाशी दवाई और जो हमारा जीवाणुनाशक दवाई है उनसे हम उपचार करते हैं। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 10 लीटर हमने पानी लिया और 2 लीटर प्रति पानी आपको बावस्टीन दवाई डालनी है या कार्बन डाइजिम, इसके अलावा 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल दें उसमें, और घोल बनाने के बाद इसमें बीज आप डाल दें, आवश्यकता अनुसार घोल बना लें और उसमें बीज को आप डाल दें, और इस बीज को आपको 24 घंटे के लिए उसमें डूबा रखना है। 24 घंटे बाद उसका पानी उतार दें और जो बीज बचा है उसको किसी छायादार स्थान पर ले जाएं, वहां पर बोरा या सूती कपड़ा हो कोई बिछा दें, उसके ऊपर इस बीज को आप पलट दें और इसको ऊपर से भी ढक दें। ध्यान से सुने, इस बीज को ढकना जरूरी है, नहीं तो इसमें हवा निकल जाएगी यानी नमी की कमी आ जाएगी। और फिर समय समय पर इस पर हल्का छींटा पानी का 4-5 घंटे के अंतर पर मारते रहें। ये पानी में डूबा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का नम रहे बीज आपका। आप देखेंगे कि 24 से 36 घंटे बाद इस बीज में अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। इस अंकुरित बीज को आप नर्सरी में, जहां पे नर्सरी आप लगानी है उसमें इसकी बुआई कर सकते हैं। आपने समय पूछा था, आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे थे, तो समय जैसे मैंने बताया मई के अंत में आप दोनों काम कर सकते हैं, नर्सरी की बुआई भी कर सकते हैं, या जून के पहले सप्ताह में अगर आप ये कार्य करेंगे तो सबसे अच्छा समय रहेगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से आप जो है बीज उपचार कर सकते हैं साथियों, और दोनों ही तरीके से, चाहे आपको बिजाई करनी है सीधे बिजाई या फिर आप तैयारी कर रहे हैं नर्सरी की, दोनों ही तरीकों में क्या कुछ आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी है कि आज 11 मई है, अगर हमारे किसान मित्रों को सीधी बिजाई करनी है, उसके लिए खेत की तैयारी करनी है, अगर धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो वो कब से एक बार शुरुआत करते हैं और क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए खेत तैयारी के लिए?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो भी किसान भाई सुन रहे हैं इस बात को, गर्मियों की जुताई का विशेष महत्व होता है। आपकी ज्यादातर रबी की फसलें कट चुकी हैं पहले ही, एक आध फसल बची होगी कोई सब्जी की, प्याज की, जो नहीं कटी होगी। अगर उसके बाद आपको उसमें धान लगाना है तो सबसे पहला सुझाव यही होता है हमेशा हम लोगों का कि गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करके उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसमें धूप लगने दें। जितनी ज्यादा धूप लगती है उसमें मिट्टी में जो रोग कारक कीटाणु जीवाणु और फफूंद और जो आपके कीड़े मकोड़े अंडे बच्चे बीमारी करने वाले होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद जैसे जैसे
1: कितने दिन के लिए छोड़नी
0: सर? जी बिल्कुल, देखिए जब गर्मियों के महीने होते हैं हमारे, खास करके अप्रैल, 20 अप्रैल के बाद मई पूरा छोड़ सकते हैं और मई के अंत में आप खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या जून के पहले पखवाड़े में जैसे आपको धान लगाना है तो अगर आपको सूखी विधि से धान लगाना है, यानी सूखे खेत में लगाना है, तो उसमें पलेवा करना जरूरी होता है। पलेवा कर दें आप, नहर का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो, जो भी आपके पास हो, और उसके उसमें बारिश का इंतजार ना करें क्योंकि बारिश तो बाद में आती है। तो इसके लिए उन्हीं दशाओं में इस तरह का धान हो सकता है जहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। अगर ये साधन उपलब्ध नहीं है तो आप ये धान नहीं कर सकते। इसके लिए पलेवा करें, पलेवा करने के बाद जब वो कंडीशन में आ जाए, सही बत्तर में आ जाए, शायद पंजाब में इसको बत्तर बोलते हैं, बत्तर में आ जाए तब इसकी आप खेत की तैयारी करें। एक या दो बार कल्टीवेटर या हैरो से इसकी जुताई कर लें, खेत को समतल कर लें। और यहाँ पे ये बताना नितांत आवश्यक है सभी किसान भाइयों को कि खेत का समतलीकरण करना बहुत जरूरी है। लेजर लैंड लेवलर सभी जानते हैं, लेजर मशीन या मांझा कहते हैं कुछ किसान भाई उसको, उससे अपने खेत को समतल कर लें। इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत हमारे खेत में होती है। इसके बाद जब आपका खेत तैयार हो जाए तो आप सीड ड्रिल, जो नॉर्मल सीड ड्रिल आती है, उससे आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। कई तरीके की मशीनें आती हैं, ट्रैक्टर से चलने वाली आती हैं, बैलों से चलने वाली आती हैं, उन मशीनों से ड्रिलिंग कर दें। किसी किसान भाई के पास अगर कुछ भी ना हो इस तरह की मशीनें, छोटा किसान है, तो वो देसी हल से भी सीधे धान की बिजाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान खास आपको ये रखना होता है कि बुआई की गहराई ज्यादा ना हो, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई रखें, और उसमें बुआई करने के बाद पाटा जरूर लगा दें जिससे उसमें नमी संरक्षित रहे, तो आपका अंकुरण अच्छा होता है।
3: तो डॉक्टर साहब, इसमें बीज की कितनी मात्रा हो और बुआई की अगर दूरी की बात करें तो कितनी रखनी चाहिए, इस पे क्या?
0: ये बहुत जरूरी है। देखो किसान भाइयों, आपको सही संख्या में पौधों को रखना है। पौधे हमारे जरूरत से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, दोनों दशाओं में पैदावार पे असर आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक सुझाव यही आते हैं कि धान में मोटे तौर पर 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ये किस्मों पर निर्भर करता है, अगर आपके मोटे दाने वाली किस्में तो 30 किलो लगेगा और बारीक और महीन दाने हैं तो 25 किलो मोटे तौर पे जो है बीज इसमें लगता है। सीधी बिजाई हो चाहे नर्सरी आप 1 हेक्टेयर के लिए तैयार कर रहे हैं, दोनों में बीज की मात्रा लगभग बराबर होती है। और दूसरा, इसमें जो बुआई की दूरी है, अगर आप सीधी बिजाई से कर रहे हैं तो बुआई की दूरी 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर। कई बार किसान 20 सेंटीमीटर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हम कसोले से या किसी यांत्रिक विधि से उसमें हम गुड़ाई करना चाहते हैं या हम खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। ऐसी दशा में आप 25 सेंटीमीटर पर भी धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जो सुविधाजनक रहता है। इसमें आप यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने सीधी बिजाई के बारे में भी काफ़ी बातें की और कुछ कुछ बातें की हमने किस तरह से रोपाई हमारे किसान मित्र कर सकते हैं। तो अब जानना चाहते हैं, क्योंकि सीधी बुआई के जरिए किसानों ने तैयारी कर ली, समझ लीजिए
0: जी, जी, जी।
1: अब अगर वो रोपाई करना चाहते हैं, रोपाई के माध्यम से खेत तैयार उगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो किस तरह से शुरुआत करें, क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए उन्हें?
0: जी बिल्कुल, देखिए नर्सरी का तैयार करना बहुत जरूरी है आपको, और अच्छी और स्वस्थ नर्सरी जरूरी है क्योंकि आपको रोपाई करनी है बाद में। इसके लिए आपको खेत में पानी खड़ा करना पड़ता है। पहले नर्सरी का क्षेत्रफल मैं बता दूं कि मोटे तौर पर 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जो है नर्सरी उगाई जाती है। हालांकि ये किस मेथड से आप नर्सरी उगा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। एक डेपोक मेथड होता है होता है नर्सरी उगाने का, डेपोक विधि होती है, जिसमें काफी कम बीज लगता है और बहुत जल्दी पौध हमारी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ गीली क्यारी विधि आमतौर पर किसान अपनाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, खेत में लगभग 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा कर देते हैं और चारों तरफ से मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे कि पानी हमारा बहे ना, उसका कोई नुकसान ना हो। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जितने क्षेत्रफल में हमें रोपाई करनी है, मोटे तौर पे उसका 1/10 हिस्सा

0: नर्सरी के लिए जरूरी होता है। यानी अगर 10 बीघा आपको रोपाई करनी है तो 1 बीघा खेत में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, और इसमें पानी भरने के बाद आप इसमें कादल काटें या कादो बनाएं, गारा बनाएं, 2-3 बार उसमें पडलर हो, मशीन हो, कल्टीवेटर हो, देसी हल हो, मिट्टी पलट हल हो, जो भी यंत्र आपके पास उपलब्ध हो उससे 2 बार जुताई करके गारा बनाएं, फिर उसका 1 दिन कम से कम इंतजार करें 12-14 घंटे, और फिर उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाएं। क्यारियां आप 1.25 मीटर चौड़ी बनाए, 1.25 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाए, लंबाई मोटे तौर पे 5 से लेकर 8 मीटर तक आप रख सकते हैं, और 2 क्यारियों के बीच में आपको लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की नाली भी रखनी पड़ती है जिससे कि पानी को निकासी हो सके, पानी लगाया जा सके, और उसमें बैठ के लोग खरपतवारों को भी निकाल सके। तो इस तरह से आप खेत तैयार करते हैं, और इसके बाद जैसे मैंने बताया था उपचारित बीज, उस बीज को समान रूप से इन क्यारियों में बिखेर दिया जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे और बातें करेंगे। एक श्रोता बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुनते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
1: जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दोबारा दोहराए, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी।
2: सबसे ये पूछना चाहता हूँ, सीधी बिजाई में सोनीपत के लिए कौन सी किस्म बढ़िया रहेगी, और ये किस में 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत और पानीपत का जो इलाका है इसमें हम यही सलाह देते हैं कि आप सीधी बिजाई करें, और इसमें भी आपके लिए बासमती की जो किस्में हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। हमारे संस्थान की 2 वैरायटी हैं, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। जो पूसा बासमती 1979 है, एक तरह से ये हमारा पूसा बासमती 1121 का सुधरा हुआ रूप है, और 1985 जो है ये आपका 1509 का रूप है। तो कुल मिला के इन 2 किस्मों में से 1 किस्म आप चुन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी रहेंगी। और दूसरा सवाल आपका था कि इनकी पैदावार कितनी आती है, तो मोटे तौर पे अगर आपने प्रबंधन ठीक किया तो 20 क्विंटल 1 एकड़ में आपको बड़ी आसानी से इसकी पैदावार मिल सकती है।
3: डॉक्टर दिनेश, जो नर्सरी तैयार करने में पहले तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या ये समय उपयुक्त समय है या कौन सा उपयुक्त समय है?
0: जी बिल्कुल, देखिए नर्सरी तैयार करने के लिए आपको इस महीने के अंत में, यानी आप समझिए 25 मई के आसपास आप नर्सरी में बुआई कर सकते हैं, और ये कार्य आप 10 जून 15 जून तक कर सकते हैं। किस्मों पर निर्भर करता है, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कम अवधि की होती हैं, उसकी नर्सरी थोड़ा बाद में भी डाली जा सकती है। तो ये तो समय की बात होगी, और नर्सरी में कई सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। एक तो जैसे बात हुई, बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, सही किस्म का हो, और उसका अंकुरण क्षमता अच्छी हो, उसकी शुद्धता अच्छी हो, खराब बीज ना हो। एक तो बीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, दूसरे खेत सही तरीके से तैयार करना चाहिए, और जो कि आज का विषय भी है कि उर्वरक प्रबंधन या पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो इसमें सही मात्रा में पोषक तत्व भी डालने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, तो इसमें हम लगभग 600 से 800 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद डालें, इसके अलावा लगभग 12 से 15 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 7 किलो जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट, ये जो 4-5 खाद और उर्वरक मैंने बताए हैं ये डालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपकी नर्सरी में पौध में कई तरह के रोग आ जाएंगे, लक्षण आ जाएंगे पोषक तत्वों की कमी के। तो इसमें आप ये उर्वरकों का प्रबंधन जरूर करें, और इसके बाद अच्छी तरह से इनको मिट्टी में मिला दें, तभी आप बीज की रोपाई करें। इसके अलावा नर्सरी में आपको सही तरीके से जल प्रबंधन करना भी जरूरी है, खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, और अगर कीड़े मकोड़े बीमारी आती है तो उनका प्रबंधन भी जरूरी होता है।
3: डॉक्टर साहब, ये आपने बताया नर्सरी के बारे में, जब हम सीधी बुआई करते हैं तो तब उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, जल प्रबंधन कैसे करना है?
0: जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें विशेष महत्व है पोषक तत्व प्रबंधन का, खास करके जैसे अगर हमने संकर किस्में लगानी, कुछ किसान हाइब्रिड लगाते हैं या अधिक उपज देने वाली किस्में लगाते हैं, तो इसमें आम धान से, रोपाई वाले धान से नाइट्रोजन का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है। इसमें 150 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर डालना होता है, फॉस्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, P2O5 और पोटाश जो है 50 से 60 किलोग्राम K2O और 25 किलो जिंक सल्फेट ये हमें डालना पड़ता है। आधी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की संपूर्ण मात्रा सीधी बिजाई के समय खेत में आप बखेर सकते हैं, और अगर संभव हो तो प्लेसमेंट करना अच्छा रहता है, खास करके फास्फोरस और पोटाशिक उर्वरक का, और जो बाकी हमारी नाइट्रोजन बची है उसको हम दो बराबर भागों में या तीन बराबर भागों में बांट कर हम उसको

0: ड्रेस कर सकते हैं फसल में। तो ये पोषक तत्व प्रबंधन है। बासमती किस्में उगा रहे हैं तो इसके लिए हमारे संस्थान की संस्तुति है, क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी आती है। हमारे संस्थान की जितनी भी किस्में हैं, ज्यादातर किस्में हमारी 4, 5, 5.5 टन, 6 टन प्रति हेक्टर तक बासमती की उपज देती हैं, तो इनमें पोषक तत्वों की खपत भी ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से इनमें 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस, 30 से 40 पोटाश और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की जरूरत होती है।
1: डॉक्टर साहब एक बात और है, बहुत सुनने में आता है कि जब सीधी बुआई की बात होती है या फसलों में टीका लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो किस तरह के टीके लगाए जाते हैं, किस समय लगाए जाते हैं, क्या चीज है ये?
0: जी बिल्कुल, किसान भाइयों देखो, आज कल भारत सरकार भी बहुत जोर दे रही है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हमें कम करना है, और 2030 तक सरकार भी ये चाहती है कि उर्वरकों की खपत लगभग 25% कम हो जाए। इस दिशा में आपको भी कार्य करना, क्योंकि ये आपके हित में, आपके फायदे में। तो इसमें आपको क्या करना है, जैव उर्वरक जो विकल्प है हमारे रासायनिक उर्वरक के, हरी खाद, देसी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा जैव उर्वरक होते हैं। जैसे मैडम ने पूछा टीका लगाना, तो ये जैव उर्वरकों का टीका होता है जिसका प्रयोग आप धान में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एजोटोबैक्टर का टीका आता है, बहुत सस्ता आता है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते, 20-25 रुपए में हो सकता है आपको एक पैकेट मिल जाए। इसी तरीके से PSB फास्फेट घोलक का टीका होता है, इन दोनों टीकों को आप ले सकते हैं और धान के बीज का उपचार कर सकते हैं। और आपको पता है कि पहले आपको कवकनाशी से बीज का उपचार करना, जैसे मैंने कार्बेंडाजिम से बताया था, उस बीज के एक दिन बाद, दो दिन बाद आप ये जो जैव उर्वरक बताए, फास्फोरस घोलक टीका और दूसरा हमारा ये था एजोटोबैक्टर का टीका, इनका जो है वो पर्याप्त उपयोग करना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब हमने टीकों की बात कर ली, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किस तरह से टीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे कोई किसान मित्र सीधे बिजाई कर रहे हैं, तो काफ़ी उसकी जो हमने चीज़ें देखी कि फ़ायदा तो बहुत दिख रहा है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं या परेशानियां हैं जिसका सामना उनको करना पड़ सकता है हमारे किसानों को?
0: निश्चित तौर पर सीधी बिजाई में 3 मुख्य समस्याएं आती हैं और जिसकी वजह से कई बार किसान भी संकोच करते हैं, लेकिन आजकल ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके की हमारे रसायन उपलब्ध हैं जिनसे आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पहली समस्या, बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में खरपतवार आते हैं, तो उसको शुरू से ही आपको ध्यान रखना है, बुआई के समय पे ही आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। बाद में भी खरपतवार आते हैं तो खरपतवार नाशी उपलब्ध है। दूसरी समस्या इसकी आती है लोहे की कमी। लोहे की कमी को दूर करने के लिए आपको सही समय पे और सही मात्रा में सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर सिंचाई में आपने थोड़ी ढील कर दी या सही समय पर सिंचाई नहीं दे पाए तो लोहे की कमी आ जाती है। तो सिंचाई प्रबंधन करके लोहे की कमी को दूर किया जा सकता है। और तीसरी समस्या सीधी बिजाई में होती है सूत्रकृमि, जो निमेटोड होते हैं, ये गांठ बना लेते हैं नीचे मिट्टी में, जो धान की जड़ें होती हैं उनमें गांठ बन जाती है सफेद रंग की। इसकी पहचान किसान कर सकते हैं, पौधे की बढ़वार रुक सकती है और ये गांठें नर्सरी में भी बन सकती हैं। तो इसमें कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवाई आती है, उसकी 25 किलोग्राम मात्रा 3% में आती है। 3CG जो ग्रेनुल था वो मिलना बंद हो गया, अब CG करके आ गया, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं निमेटोड दूर करने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: डॉक्टर साहब जैसे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब सीधी बिजाई करते हैं तो खरपतवार ज्यादा होता है, तो उसका प्रबंधन किस तरह से करें?
0: जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए सबसे पहले बुआई के समय पे आपको पेंडीमिथालिन नाम की दवाई का प्रयोग करना है। पेंडीमिथालिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व आप प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ और इसमें एक खास ध्यान रखना है कि उसका प्रयोग बुआई से 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप कर लें, और साथ ही ऐसी दशा में खरपतवार नाशी का प्रयोग करें जब खेत में नमी हो। अगर नमी की कमी हो तो इसका प्रभाव कम आता है, नहीं आता। दूसरा, जब खड़ी फसल में खरपतवार आते हैं तो उसके लिए बिस्पारीबैक सोडियम है और बहुत सारे रसायन उपलब्ध हैं जिनसे आप खरपतवारों का प्रबंध कर सकते हैं।
2: और अगर नर्सरी की बात करें तो उसमें किस तरह से जैसे तैयारी और खासतौर से उर्वरक प्रबंधन करना है, कोई विशेष हिदायत?
0: जी बिल्कुल, देखिए उर्वरक प्रबंधन में जैसे कि चर्चा हो ही रही थी कि जो हमारी देसी खाद है उसका प्रयोग करना है और सही मात्रा में NPK यूरिया आपका नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस, पोटाश वगैरह आप डालें और सही मात्रा में जिंक का प्रयोग करें। तो इस तरह से उर्वरकों का प्रबंधन बहुत जरूरी है नर्सरी में। और खड़ी फसल में अगर आपको कमी आती है तो उसमें 1% यूरिया के घोल का भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि किसान मित्र अगर सोच रहे हैं कि अगर उन्हें नर्सरी लगानी चाहिए या या फिर उन्हें सीधी बिजाई करनी चाहिए, तो आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आपको सीधे नर्सरी

0: लगानी चाहिए या सीधी बुआई करनी चाहिए, कैसे वो इस चीज को चुनाव करें?
1: जी बिल्कुल, देखिए जहां किसान के पास पानी की कमी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज का, जहां जहां पानी की कमी है वहां पे आप सीधी बिजाई से धान उगाए, और जहां आपके पास फ्री का पानी है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी है, वहां आप रोपाई विधि से भी धान को उगा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि अनुमान इस साल का भी है, आगे भी रहता है कि भाई कई बार बारिश कम आती है, तो ऐसी दशा में सीधी बिजाई ज्यादा उपयुक्त है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहता है, और साथ ही साथ किसानों की जो लागत है फसल में आने वाली, उसमें कमी आती है और लाभ अधिक मिलता है। सही बात आपको यही बताना चाहता हूं मैं कि आपको वैज्ञानिकों से संपर्क रखना चाहिए, जिससे कि आप सीधी बिजाई को सफलतापूर्वक अपना सकें और अच्छी उपज और लाभ ले सकें।
0: जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, कि पैदावार का जो समय होता है इन दोनों ही तरह की फसलों में अमूमन कितना फर्क आता है?
1: देखिए, अगर हम प्रबंधन सीधी बिजाई वाले धान में वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। हाँ, कहीं अगर आपकी ढील रह गई तो रोपाई वाले धान से इसमें सीधी बिजाई वाले धान में पैदावार कम आ सकती है, लेकिन हमने तजर्बा किया कि पैदावार लगभग बराबर आती है।
0: समय अंतराल कितना रहता है कि एक हफ्ता जैसे ये है, एक अंदाजा बता रही हूँ, और एक दो हफ्ते ये इसका समय का?
1: निश्चित तौर पर जो हम सीधी बिजाई वाला धान लेते हैं उसमें लगभग 7 से 10 दिन पहले फसल पक के तैयार हो जाती है, अगर हम तुलना करें रोपाई विधि से, तो एक हफ्ते का 10 दिन का समय मिल जाता है, जिससे किसान भाई अगली फसल यानी गेहूं की फसल समय से बो सकते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर दिनेश, आपने बहुत सारी जानकारी दी धान की फसल को लेके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका तो भी धन्यवाद।
0: जी, तो साथियों, आज हमने धान की सीधी बुआई नर्सरी तैयार करते समय उर्वरक प्रबंधन पर बात की। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे आरती को
2: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

0: बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। यह दुर्घटना आज तड़के काकिरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 जी रामजी के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट बारिश, गरज बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at the Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मित्रों, वेदों में कहा गया है कि ग्रीष्म एक दिव्य ऋतु है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे शरद, हाँ वो तो है ही दिव्य ऋतु, वर्षा को भी दिव्य ऋतु कहा गया है, लेकिन गर्मी को भी दिव्य ऋतु। अब कब कहेंगे कि इसमें क्या दिव्यता दिख रही है इस मौसम में। सूर्य नारायण जब निकलते हैं अपने पूरे के पूरे प्रताप के साथ में, तो पूरी धरती जो है आच्छादित हो जाती है सूर्य की किरणों से। और समय पर मित्रों, जो काम हो, जो मौसम हो, वही अच्छा है ना। तो आपको इस मौसम के साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूप में अगर निकले हैं, थोड़ा सा रंग सांवला हो भी गया तो भी क्या हो गया, विटामिन डी तो मिल ही रहा है और अब विटामिन एम भी मिलने वाला है। विटामिन एम यानी म्यूजिक। अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे आप मन भावन में, अपनी पसंद के गीत सुनेंगे आप FM गोल्ड AIR Delhi@gmail.com पर जब आप हमें लिखेंगे, है ना। और हम रूमी मलिक, स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का।

रानी एफएम गोल्ड ऑल दिस गोल्ड। हाँ जी, और आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते क्या, इतनी नई नई फिल्मों के गाने क्यों मांगते हो? हाँ तुलसी मस्किन जी फिर नाराज हो जाएंगे, हम और आप मेल नहीं लिया। 90s की फिल्मों के गाने कमाल हो गया, गोल्डन पीरियड के गाने मांगिए जी। हाँ जी, तो सबसे पहले अटेंडेंस ले लें। आफ्ताब, अटेंडेंस का मतलब मालूम है ना? अटेंडेंस का मतलब होता है आपके नाम लिए जाते हैं, जिन नामों से मेल आई है ना। अटेंडेंस में आपकी क्लास टीचर कभी आपके घर मोहल्ले गली का नंबर नहीं लेती थी, लेती थी क्या? नहीं ना। गोविंद वैष्णव, हरजिंदर शिंडा, आफ्ताब अंसारी, शमसुल कमर राही, गंज डुंडवारा, देखो पूरा नाम पढ़ती हूँ, कितना मुश्किल नाम है, पूरा टंग ट्विस्टर है। जय, उसके बाद है मेहर अरोड़ा, उसके बाद और कौन है, हमारे सतीश भाटिया जी हैं, बोधराज खोरवाल जी हैं। बोधराज खोरवाल जी कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं? हाथी मेरे साथी, सुन जा आ ठंडी हवा, ये गीत सुनते हैं। पर मैं कुछ कहना चाहती थी, सच्ची में मैं कहना चाहती थी कि देखो, रिश्ते निभाने के लिए जो है ना, बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि चाहिए होती है। ये रिश्ते ही तो है सचमुच में, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग देख पाते हैं, एक दूसरे को मिल भी लेते हैं, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। देखो हम किस लिए बैठे हैं इतनी भरी दोपहरी में आपकी पसंद के गीत सुनवाने के लिए ना, तो वो कदर होनी चाहिए, है ना, वो लिहाज भी होना चाहिए किसी भी आरजे के लिए, सिर्फ मेरा ही नहीं। चलिए ये गीत सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मौसम के बारे में।

सुन जा आ ठंडी हवा। बताओ इंसान जैसा कोई भी प्राणी होगा, हम चाहते हर कोई हमारी बात सुने, चाहे फिर वो मौसम ही क्यों ना हो। सुन जा, रुक जा, थम जा, आ जा, सो जा, खा जा, गीत सुनाती जा। बिल्कुल सुनाते हैं। तो ये मैं कह रही थी कि मौसम तो आज मौसम बड़ा बेईमान है। ईमानदार मौसम कौन सा होता है फिर बताओ तो जरा। देखो वो पहला गीत था ना, रूप ये तेरा, उससे मुझे याद आ रहा था कि गर्मियों में कैसा रूप बेचारा हमारा ऐसा हो जाता है ना, कुमलाया सा हो जाता है, जैसे फूल कुमला जाते हैं ना भाई। प्रचंड धूप है ना, तो उससे बचाने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। कोई दुपट्टा, कोई स्कार्फ, कोई हैट जरूर जरूर जरूर अपने साथ रखोगे। अगर चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि जो चश्मा नहीं लगाते उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, धूप का चश्मा या गॉगल्स अपने साथ में ज़रूर रखोगे। ठंडा पेय कोई अच्छा सा है ना, प्रोटीन ड्रिंक भी ले सकते हो अपनी देसी, सत्तू, चने का सत्तू या जौ का सत्तू ज़रूर रखोगे। और स्किन के लिए, चेहरा अगर लगे आपको कि थोड़ा सा झुलस गया है, तो रोज़ शाम को, बहुत आसान है ये तो, घर का काम करते करते भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा आप लेप बना लो। अब लेप में आप क्या डालोगे, सबसे आसान लेप तो होता है बेसन, हल्दी और दही का, है ना। तो इससे जो है टैनिंग जितनी हो जाती है, जो पूरा झुलस चुका है चेहरा, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें, गहरी बात करें, तो तिल का तेल, हाँ मित्रों, तिल का तेल से भी टैन बहुत कमाल का हटता है। चंदन का पाउडर मिलता है, वो हो, अगर वो न भी हो तो एलोवेरा है, घृत कुमारी, ये मैं बड़ी कमाल की आपको राज की बात बता रही हूँ, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिससे बिल्कुल टैनिंग हट जाती है। तो आप ऐसा पैक बनाएं जिसमें मुलेठी, हाँ हाँ मुलेठी का भी पाउडर आता है, बिल्कुल आता है, मुलेठी कमाल की औषधि है हमारी त्वचा के लिए भी, सिर्फ अस्थमा या सांस की बीमारी के लिए नहीं, मुलेठी हो उसमें दो चार बूंद बादाम का तेल हो, फिर उसमें कोई भी आप बेस ले सकते हैं, फिर चाहे वो मुल्तानी मिट्टी हो या फिर वो आपका कोई भी बेसन या कुछ हो, तो लगाएं और फिर खुश रहें, देखिए आपका रूप भी लौट के वापस आ जाएगा। और गर्मी में बहुत सारी चीज़ें

आता है मित्रों, मौसम जो है एक प्रकार का दर्शन भी है। बात जारी रहेगी। एफएम गोल्ड इज आर फर्स्ट चॉइस। नमस्कार रूमी सिस्टर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन लिख रहे हैं? लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी। और ये कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो आइए ये इशारा भी सुन लें।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और हमारे साथ है साधना गोयल जी। इतनी प्यारी इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है। इन्होंने लिखा है, प्यारी दिल्ली की बिल्ली जी, हाय यही मेरा तकिया कलाम।

हुआ करता था, याद है आपको, जब मैं एफएम रेनबो पे थी। अब मुझे सुनना है ये गीत, और फिल्म का नाम पता है क्या है? ब्लैक कैट। मैंने कभी नहीं सुना साधना जी इस फिल्म का नाम। अरे कहती हैं गीत है मैं तुम्ही से पूछती हूँ। अच्छा जी, ये लता जी की आवाज में गीत है मैं तुम्ही से पूछती हूँ। तो मैं भी बड़ी उत्सुक हूँ, सुने तो सही इस गीत को। इस गीत के उस पार गौरी शंकर अंकल आपका ईमेल लेंगे, पिछली बार भी रह गया था, और आप इतने ज्यादा अच्छे हो कि आप कंप्लेन भी नहीं करते हो मेरे से। मतलब सच में क्या मैं आपसे कहूँ। चलो पहले ये गीत सुनते हैं, गीत के बाद मिलके अब बाकी बातें करते हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: गोल्ड पे आ गए हम वापस। इतना अच्छा लग रहा है, इतने हॉट वेदर में इतने कूल कूल मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। हाँ सच्ची में, ये माहिरा है, माहिरा मलिक।
2: एक बार मेरे से किसी ने पूछा था, अनु मलिक म्यूजिक डायरेक्टर है ना, उन्होंने बोला कि एनी रिलेशन रूमी।

0: मैंने कहा नॉट येट. तो इससे पहले कि आप पूछें माहिरा मलिक आपके रिलेशन में है, तो मैं कहूंगी नॉट येट, है ना माहिरा. रूमी आदाब, बेशुमार मोहब्बत आपको भी मेरी जान. कनॉट प्लेस दिल्ली से लिखती है माहिरा मलिक, हिबा, आयशा, जोया, आयशा, आयशा, जोया, जैनब, मरियम. बहुत खूबसूरत और इतने कमाल कमाल के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पहले मैसेजेस जरूर लूं. क्या मजेदार, हर एक का अपना फ्लेवर, अपना कलेवर, है ना. देखो भारत भूषण जी ने मुझे व्हाइट फील्ड बैंगलोर से क्या लिखा है, इट्स सो फनी, हंस हंस के मुझे. रुमी मलिक मैम, गुड आफ्टरनून. कैंडिडली स्पीकिंग, यू आर द हेड मिस्ट्रेस ऑफ मनभावन स्कूल. This is too much fun. You seem to be very strict but very knowledgeable. If possible, please play my request song. कौन सा गीत बोला था आपने मुझे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड. भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंतु भूषण, संस्कृति, पौरुष. ठीक है, आप सबके नाम मैंने ले लिए. भारत जी, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड योर सॉन्ग, आई एम सो सॉरी, योर सॉन्ग मेरे उसमें नहीं है, मेरे पिटारे में. माहिरा सुनना चाहती है, पर्दा हटा दो एक फूल दो माली का. माहिरा बुरा तो नहीं मानो कि अभी हम थोड़ी सी और, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो उनके नाम भी तो लेने बनते हैं ना बीच में, है ना. देखो कितने, देखो ये कह रहे हैं भारत, कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट हेडमिस्ट्रेस है. कभी ऐसी हेडमिस्ट्रेस देखिए जो दो बार अटेंडेंस ले. मैं ले रही हूँ, उफ. अच्छा वो सुरेश नारंग जी क्या लिख रहे हैं, आज बरसों बाद आपने फिल्म ब्लैक कैट का गीत सुनवाया. अजी बरसों बाद आपने फरमाइश की, बड़ा ही अच्छा है ये गीत, हमारी पसंद का है जी. सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, क्या मजेदार, इंस्टेंट हमको मिला फीडबैक, बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद सैयद अबासी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रमेश चौहान जी भी हैं हमारे साथ, सलीम अख्तर जी भी हैं. ये सलीम तो लिए सीधा लिख देते, किसी भी सॉन्ग में हमारा नाम शामिल कर दीजिएगा, आपका नाम शामिल हो गया है. ठीक है जी. अच्छा वो एक ना, वो पता है वो मेल था, मैं आपको बताऊँ, मुझे ढूंढना पड़, ये पर्दा हटा दो, ना ना ना ना ना ना, कहाँ गया वो मेल, हाय हाय. चलो एक काम करते हैं, अनिल कुमार, अनिल मोहन जी भी हमारे साथ में, बसंत कुमार सिन्हा जी, रामेश्वर जी. हाँ, सो पीपल व्हाट वी विल डू इज, हम ये गाना सुनते हैं पर्दा हटा दो, उसके बाद मैं ढूंढती हूँ वो अलबेला मेल जो खो गया मेरा. पर बड़ा मजा आया सचमुच में, लवली, ऐसे इंटरेक्शन करते रहो बंधुओं.
1: ये

बड़ा मजा आता है भाई मुझे तो। जैसे मैंने कहा था ना कि ये मत सोचो थक गए घिस घिस कर ओल्ड हो गए, ये सोचो कि घिस घिस कर चमक गए गोल्ड हो गए, है ना। हमारे एक पेक्स होते थे यहाँ पे, आकाशवाणी की बात बता रही हूँ, है ना। देखिए जमाना बदलता है, रवायतें बदलती हैं, है ना। आप देखते हैं कि हम लोग कितनी जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं। आप ये सोचो कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपका मैसेज देखा मैंने, उसी वक्त मैंने सर्च किया गाना, वो नहीं मिला तो फिर दूसरा, ये टेंशन है कि जिंगल भी, क्या क्या हम चीज़ें साथ में करते हैं। बता रही थी मैं आपको कि गज गामिनी, है ना। अब देखिए कई चीज़ें कही गई हैं, मानक बताए गए हैं सुंदरता के, चाल के, कि हाथी जैसी चाल वाली स्त्री गज गामिनी मिनी, है ना, हाथी जैसी चाल। तो हमारे एक बॉस होते थे यही आकाशवाणी में, वो कहते थे कि देखिए जमाना जब बदलता, रवायतें बदलती, आजकल आज के युग में क्या माना जाएगा उसे कि बहुत अच्छी उपमा, आज जो द्रुत गति से चीजें चलती हैं, भागते दौड़ते हम हैं, आज कहा जाए गज गामिनी, गज जैसी चाल वाली। तो मतलब आप ये सोचो कि ड्यूटी रूम से मुझे स्टूडियो में चलते हुए अगर 20 मिनट लग जाए तो मेरा तो प्रोग्राम ही आधा निकल जाएगा, गज गामिनी की चाल, है ना, कैसे हो सकता है। उसी तरह से जैसे आप कह रहे थे ना, जस्ट अ पॉइंटर टू वन ऑफ यू पॉइंटिंग आउट दैट यू नो आप जल्दी देखो, मैं कहूँ ये तुम समझो वो, जो नहीं कहा जो, तो नखरे नजाकतें उनको परे रखना पड़ता है ना, क्योंकि काम भी तो निपटाना है आपके। देखो हजारों मेल जाते हैं, उसके बाद कुछ नीचे खो जाते हैं, जैसे गौरी शंकर वर्मा जी का मेल, खोज खोज के परेशान हो रही हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। तो ये सब करना पड़ता है। नमस्कार आदाब, रूमी मालिक सिस्टर को प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया। प्रोग्राम पेश करने का अंदाज आपका बहुत ही शानदार, शुक्रिया। कौन लिख रहे हैं, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबना, ठीक है, और नाम कोई रह गया, आलिया, ठीक है। ये सुनना चाहते हैं चौदहवीं का चांद हो का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, चलिए आज ये गीत सुनते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। हमारे साथ इन्होंने भारत भूषण जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लिखा है। ये कह रहे हैं कि आजकल जो है गजगामिनी के बदले आजकल की नारी के लिए वेगवती चलेगा मैम। हाँ बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भारत जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र छिपा हमारे साथ में है ना, बड़े परेशान हो जाते हैं, इनका नाम जब नहीं आता है तो मेल नीचे चला जाता है भाई। अब यार देखो ये मास्टर अशोक कुमार हैं, ठीक है, अब जब इन्होंने 25 मेल भेज दिए तो आप ना अपने साथियों को कहा कीजिए, तो आपका मेल नेचुरली नीचे चला जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। जय जो है ये भी मेरे ख्याल से इनके फादर हैं, बोधराज कोरवाल जी, एक ही फैमिली से कई मेल्स आते हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मेरा ख्याल से अब नईम खान जी चाहते हैं कि वो गीत सुने, छेड़ो ना मेरी जुल्फे, सब लोग क्या कहेंगे। विष्णु गार्डन से नईम ने लिखा है हमें, नईम के साथ अस्मा, अनास्या और अर्शील भी हैं। तो आइए ये गीत सुनते हैं, छेड़ो ना मेरी जुल्फे।

सब लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तो भगवान से भी नहीं खुश होते हैं ना, हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं। इतने नाम पढ़ते हैं, आर्यन वर्मा, उत्तम कुमार भगत, विजय सुरालकर, संदीप मक्कर, आखिरी के 5 मिनट में भेजते हैं मैसेजेस और चाहते हैं कि इनकी पसंद क्या गीत सुनाया जाए। सिद्धार्थ गोंडाने हमारे साथ हैं, फैज अहमद खत्री भी हैं, कौशल्या देवनगन जी भी हैं। कौशल्या जी, आपका गीत मैं 4 बजे पक्का, आपका वाला गीत पक्का बजा दूंगी 4:10 पे, है ना। हरजिंदर सिंह भाटिया मैंने बोल दिया, बसंत कुमार सिन्हा जी तो कह रहे हैं किसी भी गाने में सुना दिया जाए इनका। और अब जो है मेरा ख्याल से आप सभी ने आखिरी में जितने भी लिसनर्स थे आप सभी के लिए ये गीत बजा देते हैं ना, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। जी हाँ, ये अभी हमें आखिरी में जो है उत्तम कुमार भगत जी लिख रहे हैं, रूमी जो बहुत ज्यादा मेल करते हैं उनका नाम शामिल ही ना करो, सुधर जाएंगे। वाकई में क्या बात कही है। पर चलिए प्यार मोहब्बत से एंड करते हैं आखिरी गीत मन भावन का, सुनते रहिए 5:10 पर भी गाते गुनगुनाते में आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए FM गोल्ड खरा सुना।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ

0: गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बंबई में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भू विज्ञान से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि अतीत में कार्बन कैप्चर के कई सफल प्रयोग हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। ये दुर्घटना आज तड़के काकीरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: or tie-in, or you could also go on to www.main.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड इन पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा वार्षिक आधार पर होगी जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पद का नाम है पीजीटी गणित 1 पद, काउंसलर 1 पद, नर्सिंग सहायक 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक 1 पद, पीटीआई सह मैट्रन महिला और पीईएम 2 पद तथा सामान्य कर्मचारी 2 पद। आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.sainikschoolpungalwa.nic.in। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 18 मई 2026, जबकि इंटरव्यू 22 और 23 मई 2026 के बीच किए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। टीजीटी अंग्रेजी अनारक्षित, काउंसलर अनारक्षित, आर्ट मास्टर अनारक्षित और संगीत शिक्षक का पद भी अनारक्षित है। टीजीटी अंग्रेजी का वेतनमान रहेगा 25,000 रूपए से 50,000 रूपए। इसी प्रकार काउंसलर के पद का वेतनमान भी 25,000 से 50,000 रूपए रहेगा, जबकि आर्ट मास्टर और संगीत शिक्षक के लिए वेतनमान 20,000 से 25,000 रूपए का रहेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। होटल प्रबंधन खानपान एवं पोषण संस्थान अहमदाबाद शिक्षण सहयोगी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 1 पद सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समेकित वेतन रहेगा 25,000 रूपए प्रतिमाह। पूरी जानकारी के लिए देखिए होटल प्रबंधन खानपान और पोषण संस्थान अहमदाबाद की ये वेबसाइट www.ihmahmedabad.com। 200 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य IHM अहमदाबाद के नाम आवेदन के साथ भेजना होगा। ऐसा न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। सैनिक स्कूल सतारा में इन रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टीजीटी गणित 2 पद, टीजीटी हिंदी 2 पद, टीजीटी सामाजिक विज्ञान 1 पद, टीजीटी मराठी कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान और विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है, जबकि वार्ड बॉय मैट्रन छात्रावास के लिए 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ये सभी पद अनारक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार सतारा महाराष्ट्र में अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainiksatara.org। अननेट इंडिया इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक समूह का 1 पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह का 1 पद, तकनीकी सहायक समूह ख 1 पद और निजी सहायक समूह ख 1 पद। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरणों के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ernet.in। कोई भी संशोधन परिवर्तन आदि अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और इस समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्व को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो अतहर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट अतहर सईद। Well, listeners, reggae music and Bob Marley gained immense global popularity. Yes, Bob Marley, by combining unique musical elements, powerful social messaging, and rebellious artistry, made reggae music famous. Today, we observe his death anniversary. We will talk about him later in our program, but first, we begin with the news headlines first.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की।
2: वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी अनाउंसेस ट्रांसफर ऑफ लैंड टू बीएसएफ फॉर बॉर्डर फेंसिंग, ऑल्सो लॉन्चेस आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम इन द स्टेट।
1: केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की।
2: SBI research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth is 6.6% in the current fiscal.
1: IPL cricket mein aaj shaam Punjab Kings ka muqabla Delhi Capitals se.
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Technology Day. Well, Athar, today we bring you a very special extending program on the occasion of National Technology Day. Every year on the 11th of May, India celebrates this important day to honor the remarkable achievements of our scientists, engineers, innovators and researchers who continue to shape the nation's future through science and technology. And today's program is a journey through India's scientific milestones, inspiring innovations and the dreams that are transforming a nation into a global technological powerhouse. And dear listeners, National Technology Day is observed every year to commemorate one of the proudest moments in India's scientific history. On this day in 1998, India successfully conducted a series of nuclear tests in Pokhran, Rajasthan, under Operation Shakti. And this test demonstrated India's scientific capability and technological strength before the world.

0: निश्चित रूप से शाबाशियां उन वैज्ञानिकों को जो कि आज के दिन को सफल और सार्थक बनाते हैं। अभिषेक, इस सफल मिशन ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाया। ये केवल एक वैज्ञानिक घटना मात्र नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक क्षण था। ये परीक्षण भारत के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक के कुशल नेतृत्व में किए गए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह अभियान असाधारण सटीकता, गोपनीयता और टीम वर्क के साथ संचालित किया गया था। वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी स्वदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तरीय तकनीकी सफलता हासिल कर सकता है।
1: Yes, but Arthur and listeners, that's not all. National Technology Day also commemorates another historic achievement, the successful flight of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. And this aircraft represented India's growing capabilities in aviation technology and self-reliance in aerospace engineering. And the same period also witnessed important advancements in missile development and defense research, strengthening India's position globally. And so every year, National Technology Day reminds us that innovation, science and determination can transform the destiny of a nation. So dear listeners, have you ever imagined life without technology? No smartphones, no internet, no online classes, no digital banking, no GPS navigation, no advanced medical treatments. Well, Arthur, can you imagine such a scenario?
0: बिल्कुल ठीक है आपने अभिषेक। प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर हिस्से में गहराई से जुड़ी हुई है। आप महसूस करके देखें कि जिस पल हम सुबह उठकर अपना फोन देखते हैं, अपना स्मार्टफोन देखते हैं, उस पल से लेकर रात को बल्ब बुझने तक, यानी बल्ब के ऑफ होने तक, टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे आसपास मौजूद है। किसान की अगर बात करें तो किसान अब मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले ऐप्स और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स रोबोट की मदद से जटिल सर्जरी करने में सक्षम नजर आते हैं। छात्र दूर दराज के गांवों से वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी को बेहद आसान और बेहद तेज बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो व्यवसायों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और यहां तक कि आपदा प्रबंधन टीमों की भी वो मदद करता है। अभिषेक, टेक्नोलॉजी महज मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। ये समय बचाती है, अवसर पैदा करती है, लोगों को जोड़ती है और समस्याओं को हल करती है। आज के दिन हम देखते हैं कि भारत तेजी से दुनिया के अग्रणी इनोवेशन हब में से एक बनता जा रहा है कि नहीं अभिषेक?
1: Absolutely, Arthur and friends, India's journey in science and technology has been truly remarkable. From launching satellites into space to becoming a global IT leader, India has shown the world what determination and talent can achieve. Now let us take a look at some milestones that made every Indian proud. Arthur, you know, India Space Agency, Indian Space Research Organization, successfully launched missions like Chandrayaan 3, which made India the first nation to land near the Moon's South Pole. Then, of course, the Mars Orbiter mission, making India first Asian nation to reach Mars orbit successfully on his first attempt. Do you remember, Arthur?
0: बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक। प्रौद्योगिकी के सहारे भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। अब भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन और रिसर्च का एक वैश्विक केंद्र भी बन गया है। आज भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया की कुछ सबसे उन्नत तकनीकों में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं तक भारतीय प्रतिभा हर जगह अपनी चमक बिखेर रही है और शताब्दी भविष्य तो और भी उज्जवल नजर आता है। क्यों अभिषेक?
1: Yes, Arthur, and India is now focusing strongly on artificial intelligence, which is of course the in thing, isn't it? And then quantum computing, semiconductor manufacturing, biotechnology, renewable energy, electric vehicles, robotics, cyber security, green technologies. Well, this sector is expected to transform the world in the coming decades, and India is preparing to lead.
0: बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वैज्ञानिकों, उन इनोवेटर्स को श्रद्धांजलि दी जिनके समर्पण ने देश को मजबूत बनाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 1998 के सफल पोखरण परीक्षणों के पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को गर्व के साथ याद करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन अवसरों का विस्तार कर रहा है, विकास की गति बढ़ा रहा है और सभी क्षेत्रों

0: में नागरिकों को सशक्त बना रहा है।
1: Yes, and he also emphasized the government's continued focus on encouraging research, supporting innovation, empowering young talent, developing indigenous technologies, and creating solutions that benefit society.
0: अभिषेक, एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को राष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान का सच्चा निर्माता बताया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान देने में प्रौद्योगिकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभा को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधान तैयार करने पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय प्रगति और नागरिकों की आकांक्षाओं दोनों को पूरा करे। देखा जाए तो वास्तव में हर तकनीकी सफलता के पीछे वर्षों का मौन समर्पण, कड़ी मेहनत और त्याग छिपा होता है। अभिषेक,
1: यस एंड नाउ समथिंग डिफरेंट अथर। नाउ दिस डियर यंग लिसनर्स, दिस सेगमेंट इज स्पेशली फॉर यू। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट इंस्पायरिंग द इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। हु नोज, द नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी ऐप, मे बी द नेक्स्ट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, द नेक्स्ट लाइफ सेविंग इन्वेंशन could come from one of you listening today. Curiosity is the beginning of innovation, Athar. And every great inventor once started with a simple question. Why? How? What if? And India's future depends on young minds that are creative, courageous, and determined.
0: और अभिषेक, आज हम देखते हैं कि देश भर के छात्र रोबोट बना रहे हैं, नए नए एप्स डिजाइन कर रहे हैं, विज्ञान मेलों में हिस्सा ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हैं और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई स्कूल और कॉलेज प्रयोगशालाओं, हैकाथॉन और शोध परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी ऐसे दरवाजे खोल रही है अभिषेक, जिनके बारे में पिछली पीढ़ियां केवल सपना ही देख सकती थी, और आज के डिजिटल दौर में ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है।
1: Yes, so dear students, here are some simple tips. Read more, ask questions, experiment boldly, learn continuously, and never stop dreaming. Because innovation begins with imagination. And listeners, one of the most beautiful aspects of technology is its ability to improve society. Technology can help solve real-world problems. For example, clean energy technologies help fight climate change. Medical technologies improve healthcare access. Educational apps bring learning to remote villages. Disaster warning systems save lives. Digital governance increases transparency and efficiency. And Athar, today India is using technology not just for economic growth, but also for social transformation. And the true success of innovation lies not only in profit or power, but in making life better for people. And that is the spirit of national that the National Technology Day celebrates.
0: बिल्कुल अभिषेक, आज जब हम प्रगति और इनोवेशन का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी एक पल रुककर सलाम करें जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और खोज के लिए समर्पित कर दिया है। कई लोग लेबोरेटरी के दरवाजों के पीछे चुपचाप काम करते हैं, कई लोग मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में वर्षों बिता देते हैं, कई लोग विज्ञान की उन्नति के लिए अपने आराम का त्याग कर देते हैं, तभी उनका योगदान राष्ट्रों के भविष्य को आकार देता है। भारत की वैज्ञानिक यात्रा ऐसे दूरदर्शी लोगों के प्रयासों से बनी है। मिसाल के तौर पर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन, ऐसे कई सारे नाम हैं। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अभिषेक,
1: यस, सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन अथर, साइंस इज द लाइट दैट रिमूव्स डार्कनेस एंड टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज that carries humanity towards a better future. We wish all our listeners a very happy and inspiring National Technology Day. Keep innovating, keep learning, keep dreaming. Jai Hind.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है आज। अभिषेक,
1: एंड वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम विद अ स्टोरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड इन वेस्ट बंगाल, शुभेंदु अधिकारी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
2: In a historic shift for West Bengal, Shubhendu Adhikari took the oath of office as Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground in Kolkata. The ceremony coincided with Pochishe Boishakh, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, adding cultural weight to the political transition. Shubhendu Adhikari, who defeated former Chief Minister Mamata Banerjee in Bhavanipur Assembly constituency, leads the state's first BJP government. Among others who took oath as Minister Minister Designate included Dilip Ghosh and Ogni

आज ही पुण्यतिथि है अपने समय के लोकप्रिय गायक तलत महमूद की, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने स्वर के जादू जगाए। फिल्म राखी, अनमोल रत्न, आरजू से उनके करियर को विशेष चमक मिली। फिल्म आरजू की गजल, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, अपार लोकप्रियता हासिल की। फिलहाल उनकी आवाज़ में ये एक तोहफा सुनते हैं, तेरी आँख के आंसू पी जाएं।

0: explored subconscious themes through painting, sculpture, film and fashion.
1: आज ही के दिन इस दुनिया में आए सागर सरहदी, वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक थे. उन्होंने कभी कभी चांदनी सिलसिला, नूरी दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी. आइए उन्हीं की फिल्म कभी कभी से ये गीत सुनते हैं.

0: और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अतः सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की आश्वस्त आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने

0: लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट काल के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात 76.78% रहा। किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक शामिल किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉ सिंह ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रूपये का हो गया है, वहीं रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। पुदुचेरी में बुधवार को एनडीए नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम के लिए यह मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शुरू हो चुका है गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते और आपके साथ हम रूमी मलिक। आप सभी का खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, और जब मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा हुआ।

गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे। जो इस सफर में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि वो सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड आकाशवाणी इंडिया। आपके साथ हम रूमी मलिक। सफर को आसान बनाता है एक हम सफर। हाँ, खूबसूरत हो अच्छी बात है, लेकिन हमें समझने वाला हो सबसे अच्छी बात है। जो आपके मन को समझे, आपके दिल को समझे कि आप कितने सुंदर हैं, अंदर से सचमुच में आप कितने सुंदर हैं, ऐसा हम सफर चाहिए।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कितना खूबसूरत गीत है, आपको ले जाते हैं ना एक अलग ही दुनिया में, है ना। गिला भी तुझसे है और मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे है और मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह, मुश्किल बड़ा ये प्यार है।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

गाते गुनगुनाते कि इस सफर में आप हैं रूमी मालिक के साथ में, सात संदूकों में बंद करके दफन कर दो नफरतें, सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी। जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी। मजबूर थे हम उससे मोहब्बत भी बहुत थी।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। और सबसे सुंदर, अगर सुंदर सौंदर्य की बात करें ना हम प्रसादनों की या सोना श्रृंगार में, मुझे तो बिंदी बहुत ज्यादा पसंद है। आज बिंदी लगा के आई थी लेकिन पता नहीं कैसे रास्ते में बिंदी आई नहीं अभी मेरे माथे पे। बहुत ही कमाल की चीज है जी। और नहीं तो क्या, बिल्कुल आपका आज्ञा चक्र जहाँ पे होता है वहां पे जब बिंदी लगाते हैं पुरुष तो तिलक

लगाते हैं तो उससे क्या होता है, कंट्रोल में रहता है दिमाग, जी हाँ, गुस्सा नहीं आता, इमोशंस बहुत खूबसूरती से कंट्रोल हो जाती हैं। तो सोचिए कैसी हमारी संस्कृति है कि एक बिंदी जो इतनी सुंदर लगती है, जो संस्कृति का अभिन्न अंग भी है और इतने फायदे भी हैं, शारीरिक मानसिक तौर पे भी हमें स्ट्रेस से तनाव से दूर रखती है। आहा, लेकिन आप कहेंगे कैसे दूर रखती है, इंजन आपको देखो ही हमसे पूछेंगे कि इस बिंदिया ने तो मेरी निंदिया छीन ली, उसका भी इलाज है, बताएंगे गाने के उस पार।

गाते गुनगुनाते कि आखिरी पड़ाव पर हम आ गए। आखिरी गीत सुनने से पहले आपको यही कहेंगे कि जो है उसके लिए धन्यवाद कहना खुशी की शुरुआत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम रूमी मलिक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier, addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster countries' readiness to ensure its minimum effect on the

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, अभी आपने पारस मणि फिल्म से बेहतरीन संगीत सुना, और अब आप सुनेंगे फिल्म घर से ये बेहतरीन संगीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासोत्रो भविष्यति। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः

0: दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत् 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी 1 वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि

0: की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः वीबीजी रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलम विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलम समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघ गर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि संभाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: Namaskar and good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. And the numbers at which you can call us are as follows: 2331-1444, 2331-0481 and 2371-7106. Of course, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add prefix code 011. All right. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
1: धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं: 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा. नमस्कार शिशिर, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.

0: आप श्रोताओं का अभिनंदन।
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग।
2: थैंक यू सोनू। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 1300 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस एट 23,816। Union Minister Ashwini Vaishnav urges citizens and businesses to reduce expenditure on items requiring foreign exchange. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 1300 अंकों से अधिक टूट गया। निफ्टी 23,816 पर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नागरिकों और व्यापार जगत से आग्रह किया कि वे विदेशी मुद्रा से खरीदे जाने वाली वस्तुओं पर खर्च में कटौती करें। और कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में आई वृद्धि।

0: And friends, before we move ahead, here's a disclaimer for all our listener friends, and that is that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: और अब चलते हैं घरेलू बाजारों की ओर, जहां प्रमुख सूचकांक आज गिरावट में रहे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आ गई और निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स 1.7% की मंदी से 1,313 अंकों की भारी गिरावट दर्ज करते हुए 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 1.5% के नुकसान से 308 अंक कम होकर 23,816 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो कैप 100 सूचकांक 1% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% से अधिक गिरावट आई। शुरुआत में बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गिरावट पर खुले थे और पूरे सत्र के दौरान बाजार पर बिकवाली का दबाव बना रहा। हालांकि सत्र के दौरान सूचकांकों ने शुरुआती गिरावट से आंशिक रूप से उबरने की कोशिश की, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में बिकवाली तेज होने से बाजार नीचे आ गए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स फेल टुडे एज अ फ्रेश फ्लेयर up in US and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The Sensex plunged 1,313 points or 1.7% to close at 76,015. The Nifty lost 360 points or 1.5% to settle at 23,816. The broader market on the National Stock Exchange also ended with losses. Mid-cap 100 dipped 1%, while the small-cap 100 fell over 1.1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid weak global cues and remained under pressure throughout the session. Although the indices attempted to pare some of their initial losses during the day, intensified selling in the final hour dragged the markets lower.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 के शेयर गिरावट में रहे। सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियों में टाइटन का शेयर 6.8% से अधिक लुढ़क गया, इंडिगो का शेयर 4.7% के नुकसान में रहा और एसबीआई का शेयर 4.5% गिरकर बंद हुआ। उधर बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में सबसे ऊपर रहा 1.3% उछाल के साथ सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 0.8% से अधिक और अदानी पोर्ट्स के शेयर में 0.3% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices at the BSE, 23 out of 25 sectors edged downward. Among the top losers, consumer durables nosedived around 3.8%, realty lost over 2.7%, and mid-small private banks' quality tilt dropped 2.6%. Meanwhile, the two gainers were hospitals, which rose 2%, and healthcare, which climbed 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,892 companies declined, 1,457 advanced and 189 remained unchanged.
1: और अब हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें।
2: हाँ नमस्कार मैडम सभी को।
1: जी नमस्कार
2: सर। सीना सर से प्रश्न है दो की, सर आज की जो गिरावट में मुख्य कारण क्या रहे, और दूसरी सर की मैं एक चीज पिछले बार से पूछा था लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया था, मैं दोबारा से पूछता हूँ।

0: जैसे कि मान लीजिए दक्षिण हम एशियाई महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनके साथ जो हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है, एक उदाहरण के तौर पे एक कंट्री का मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम पाम ऑयल के इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, मान लीजिए, ठीक है सर, तो मान लीजिए कि एक लीटर की कीमत है मान लीजिए $1 एक एग्जाम्पल, और हमसे अगर मलेशिया इंपोर्ट करता है बासमती राइस, और बासमती राइस की भी 1 केजी का प्राइस है मान लीजिए 92, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों देशों के बीच में कोई ऐसा एमओयू साइन हो जिससे ये हो कि आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम उससे डॉलर एक्सचेंज ना करके, तो इससे क्या होगा कि सर कि हमें डॉलर की जरूरत पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी, और इससे क्या होगा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हमें सुरक्षित रहेगा।
1: हम आपका सुझाव समझ गए।
2: अमित जी, आपका पहला प्रश्न था कि आज के बाजार की गिरावट क्यों की वजहें क्या थी। देखिए, पिछले 3 दिनों से आ रहा था कि प्रस्ताव जा रहा है, प्रस्ताव गया ईरान की ओर से और फिर उसे खारिज कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर उससे बाजार में थोड़ी घबराहट बनी। और भारत की वजह एक ये भी है कि चूंकि कई चीजों में निर्भरता हमारी काफी है, खासतौर पे पेट्रोलियम की हम लोग बात करें चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए, और उसकी वजह से घबराहट की वजह से बाजार में आपने जो है वो बिकवाली देखी और लगभग 1300 पॉइंट जो है सेंसेक्स गिर गया। आपका दूसरा जो प्रश्न है वो है कि दो देशों के बीच, खासतौर पे आपने जिक्र किया कि एशियाई देशों के बीच ऐसा कोई समझौता हो जिससे व्यापार का निपटारा स्थानीय मुद्रा में हो, तो देखिए 22 देशों के साथ हमारा समझौता है जिसमें मलेशिया भी शामिल है, और उनके साथ जो व्यापार का निपटारा होता है वो स्थानीय मुद्रा में ही होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं उनके साथ अभी भी डॉलर में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए डॉलर की मांग जो है वो बनी रहेगी। खासतौर पे मैं अगर क्रूड की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी मांग ज्यादा है और उनके लिए भुगतान भी जो हमें डॉलर में करना पड़ता है। लेकिन 22 देशों के साथ हमारा जो एक बायलेटरल एग्रीमेंट है उससे हम लोग भुगतान स्थानीय मुद्रा में कर रहे हैं,
1: स्थानीय मुद्रा रूपी
2: लोकल करेंसी जैसे उनको रिंगित है और हमारा रुपी है, तो उसका जो एट पार बनता है, तो हम उसमें एक तरीके से ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि आपको अगर चावल चाहिए तो आप हमको जो भुगतान करेंगे वो रुपी में है, और हमको जो चाहिए वो हमको रिंगित में करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे रशिया के साथ था, तो रशिया के साथ ये एक समस्या भी आ गई थी कि उनके पास रुपया बहुत जमा हो गया था, तो फिर जाकर के रिजर्व बैंक ने उनको अनुमति दी कि आप जो है वो बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये दोनों बराबरी के जब पार्टनर होते हैं तो उसमें स्थानीय मुद्रा में लेन देन जो है वो फायदेमंद,
1: और डॉलर से फिर आप
2: डॉलर की बचत स्वाभाविक तौर पे होती है।
1: और आई बी नाउ जॉइन बाय अशोक फ्रॉम दिल्ली। जी अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। जी
3: सर, मैंने 32 लाख रूपये लगा रखा मार्केट में, तो मैं 1.5 लाख रूपये लॉस में हूँ, तो अभी मार्केट से निकलना चाहिए कि बना रहना चाहिए?
2: देखिए, बाजार की जो स्थिति है उसमें एक साथ पूरा का पूरा निकाल लेना भी फायदेमंद नहीं है, और ना ही वो एक जिसे कहा जाए कि एक तर्कपूर्ण फैसला है। बेहतर ये होता है कि आप जब कभी भी बाजार में थोड़ी भी आप चढ़त देखें, बढ़त देखें, तो आप वहां पे मुनाफा बुक करें, जब गिरावट आए तो वहां पर थोड़ा सा जो है आप खरीदारी करें जिससे कि एवरेजिंग आपकी हो सके। एक साथ अगर सारा पैसा निकाल लेंगे किसी एक खास दिन पर, मान लीजिए कि बाजार बहुत गिरा हुआ है, तो आपका नुकसान और ज्यादा होगा। तो किस्तों में जो है वो आप खरीदारी और बिक्री करें, आपके लिए जो आपने नुकसान किया है उसकी भी भरपाई संभव है। हम ये नहीं कहे हो ही जाएगा, लेकिन उसकी भी भरपाई संभव है अगर इस तरह की रणनीति आपकी होती है। तो
1: अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से हमारे अगले कॉलर खाजा हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत, सवाल पूछे।
4: मुझे एक पैसेंजर है, एक पैसा PNR पर मेरा एक पैसेंजर है जिससे नाम में सिंगल मिस्टेक है, सिंगल लेटर मिस्टेक है, उसको चेंज करना है।
1: नहीं पर ये तो इससे लिंक्ड नहीं है, हम यहाँ पर आपके कोई इकोनॉमी बेस्ड सवाल होते हैं वो लेते हैं। चलिए हम लेट्स मूव ऑन टू रुपए पे नजर डालने लाले में। या श्योर सोनू, या अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.95 पर था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, शोभित। शोभित जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
5: Yeah, my question to the expert is about a script, if I can name the script.
2: No, that's not the policy of this program, sorry.
5: Okay, so my question is a little technical. I have inherited some shares from my father.
1: Yeah.
5: And now that company has issued shares of equal quantity by another company, they have formed another company and issued some shares. So in case I sell those shares, will it be considered as acquired on a long-term basis or on a short-term basis?
2: There are two parts of that. There are two lots. One is, of course, the shares with the originally which you got. There, the date of acquisition is the important, and whatsoever acquisition you have done, and if you are selling it and having the capital gain, that will be taxed according to short term or the long term. In that situation, I believe it will be go for the long term. Now, coming to the second part, which is saying, I believe that the company company A has formed company B, and company they are offering you shares of company B. There, the date of transfer will be the important one, on which date of transfer the share is being given, and the gain will be calculated on that basis only.
1: All right, we are now joined by Krishnamurthy. Mr. Krishnamurthy is joining us from Chennai.
6: Good evening. I have two short questions.
1: Yeah.
6: What is the current upper limit in which TDS will not be deducted from interest and dividends, number one? And number two, the new listing form 15G and 15H, the year is only, earlier it used to be the current year and assessment year, now it's only 1 year, that is 2026-27, right?
1: Yes, Shishirji.
2: Talking about the first question, the interest limit is 1 lakh rupee for the senior citizen and 50,000 rupees for the non-senior citizen. Talking about the Form 15G and Form 15H, which is basically to inform the bank that I'm not going to be in the income tax slab, so that there should not be tax deducted at source. So in that situation, of course, we are talking about the tax year. So from the next year, when you will file the return next year, that will be important. Now, this year, you have to submit the new form, exactly number. I'm just trying to recall that what is the new number for Form 15G and Form 15H. And that will be, of course, for the 1 year. Next year, again, you will have to give that form, provided that you are below the age of 60 year or above the age of 60 year. In that situation, the forms will be different.
1: और अब चलते हैं बेंगलुरु. एनआर प्रसाद है हमारे अगले कॉलर. स्वागत, सवाल पूछे.
7: यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज द असेसमेंट मैनेजमेंट गिव्स एन एनालिसिस सेइंग दैट इंडियन इन्वेस्टर्स हैव पुट ऑलमोस्ट $2 billion इन जस्ट 3 months, जनवरी फरवरी मार्च ऑफ दिस ईयर. And totally about $4 billion on the offshore markets. And nobody is talking about Indian market at all. You mean to say that Indian stock markets are a little shaky in spite of the geopolitical problem? That is, US markets also has got, Indian markets also has got. But the Indian investors are preferring the investing in offshore equities.
2: See, there are two issues. I think you are talking about the overseas investment outflow, which is, of course, high. And that also shows that the companies are expanding, because when they are investing outside, one particular region could be that they are expanding their business. If you go to Africa, if you go to any other part of the Europe, they are opening their new businesses. So there the investment is there. If you talk about the individual, of course, the limit is LRS, which is $2,50,000. Only this much money can be invested by an individual, and that is permissible. And I believe that GIFT has also encouraging people to invest in the overseas exchanges also through the GIFT City. So these are the 2-3 reasons why you are seeing that the overseas investment outflow is slightly on a higher side.
1: All right, we are now joined by another regular caller of ours, and he's Mr. Ratnakar calling us from Mumbai. Yes, Mr. Ratnakar, please ask a question. Ji.
8: Hello.
1: Hello, yes, please carry on. Yeah.
8: गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन जो होते हैं शेयर मार्केट से,
9: तो उसके प्रोविजन प्रावधान

0: हम टैक्सेशन के बारे में क्या है कि कितना शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर हम टैक्स इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन में, और वैसा ही जो लॉस होता है शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस, तो उसका हम कैरी फॉरवर्ड नहीं तो लॉस हम डिडक्ट करके ऐसा कुछ दिखा सकते हैं क्या, उसके बारे में जरा।
1: देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट जो है वो 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स 12.5% है। 1,25,000 रुपए से ऊपर का आपको जो भी लॉन्ग टर्म गेन होता है उसके ऊपर 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में जो भी आपका 1 रुपया भी है उसके ऊपर आपको भी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा, आपने पूछा शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस की बात है, तो शॉर्ट टर्म लॉस के जरिए आप जो शॉर्ट टर्म गेन है उसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने बुक में भी दिखा सकते हैं, बशर्ते कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न तारीख जो होती है यानी कि 31 जुलाई अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं 31 जुलाई तक आपने अगर रिटर्न फाइल किया है तभी आपको ये सुविधा है। अगर आपने बाद में फाइल
2: और
1: किया
2: उसी वर्ष के लिए है,
1: उसी वर्ष के लिए है, बाद में आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो ये दो शर्तें आप याद रखिएगा।
2: और yes. अब राकेश है हमारे अगले कॉलर बदलापुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
3: सर जी, मुझे एक सवाल था कि मैंने ना IPF से मेरे शेयर निकालने के लिए कंपनी को पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं पिछले अगस्त महीने में, और अभी तक मेरे को उन्होंने ये नहीं किया है, एंटाइटलमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, क्या मालूम नहीं मैंने उनके कंपनी के शेयर रिलेटेड पर्सन को भी कॉल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं।
2: खैर, हम किसी खास कंपनी के बारे में तो नहीं बताते, बट ऐसी सिचुएशन में क्या।
1: देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के तहत जो हेल्पलाइन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कहा कि जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं या कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत की उन्होंने लेकिन उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो अब इसका एक ही समाधान है कि आप उसकी हेल्पलाइन पे जाकर के जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है, अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो वहां पे भी कर सकते हैं, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है सेबी का ऑप्शन है। तो ये दो जगह पर आप जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और अगर कंपनी को जो है उस हालत में उनको जवाब देना उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है।
2: और आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश शेयर बाजार एशिया के आज सकारात्मक रुख पर बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी ब्लू चिप सेमीकंडक्टर शेयरों में तेज वृद्धि जारी रहने के बल पर 4.3% से अधिक के उछाल में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.1% बढ़ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.4% की वृद्धि आई, और हांगकांग का हैंगसेंग मामूली बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहा, लेकिन जापान के निकेई सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के प्रमुख सूचकांकों में रुख मिला जुला था। फ्रांस का कैक 40 1.1% बढ़ गया था। जर्मनी के डैक्स में 0.5% से अधिक वृद्धि थी, और लंदन का फुटसी मामूली बढ़त पर कारोबार कर रहा था।
4: Or we are now joined by Ravi from Delhi. Yes, Mr. Ravi, please ask a question.
5: Yeah. Market Mantra ji, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, short term में जैसे मैंने 5,00,000 रुपए कमाया तो उसका tax कितना भरना होगा?
1: शॉर्ट टर्म में अगर आपने 5,00,000 रुपए कमाए हैं तो 20% और 4% आपको सेस और सरचार्ज देना है। जो 5,00,000 कमाए हैं तो 20% उसका 1,00,000 रुपए हो जाता है, उसके ऊपर 4% और सरचार्ज जोड़ लीजिए सेस, तो ये आपकी कुल देनदारी जो है वो कर के लिए बनेगी।
4: राइट, वेल, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अर्ज्ड सिटीजंस एंड बिजनेसेस टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स दैट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। एड्रेसिंग द CII एनुअल बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली टुडे, मिस्टर वैष्णव सेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया इज स्टिल गोइंग ऑन एंड ट्रूस इज स्टिल फार अवे, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। Mr. Vaishnav also referred to the appeal made by Prime Minister Narendra Modi yesterday, wherein he had urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis.
6: We as citizens, as our Prime Minister has asked all of us to, can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. And in our lives, in our own ways of working, we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange. Simultaneously, we must also earn the foreign exchange more and more. Both things have to go in parallel. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation.
4: Shishir, how significant is this caution?
1: I think when we are seeing that there is no end to war, and when we have to import large quantity of crude and also gas, and the routes are really disturbed one, and the supply is not normal, in that situation, what is the best way to do that? To restrain ourselves. I mean, government is not saying that you should not do it. Government is saying that you should use it more judiciously.
4: Right.
1: Which is nothing wrong in that.
2: बिल्कुल. इसी संदर्भ में सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है. ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवीं बैठक के दौरान दी गई. बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई. भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में पेट्रोलियम की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. बैठक के दौरान बताया गया कि विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है. मंत्रियों को सूचित किया गया कि जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और वर्तमान संरक्षण का उद्देश्य संकट के लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण करना है. सो जो आप कह रहे थे कि आपूर्ति प्रबंधन सही है और लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है, एक तरह से यह आश्वासन भी है.
1: दोनों चीजें देखिए, एक तरफ तो हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन संकट है, परेशानी है, इसे सरकार इनकार नहीं कभी करती रही है. तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके इस्तेमाल में किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके को अपनाएं. अगर कारपूलिंग हो सकती है तो कारपूलिंग करें. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जा सकते हो, मेट्रो है चाहे बसेस हैं, उनका इस्तेमाल करें. माल ढुलाई में जैसे कहा गया कि आप ट्रक के बजाय जो है रेलवे का इस्तेमाल करिए. तो ये वो चीजें हैं जहां पर कोशिश है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से जो भी आपके पास आपूर्ति उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें.
4: I'm reminded of the times many decades ago when we used to go to see a film in cinema hall. Before that, there used to be a films division, short film, telling us ki dhakkan laga ke prepare karo to conserve fuel. All right.
2: Welcome. और बता दें कि भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंडों में प्रवाह इस वर्ष मार्च के 40,450 करोड़ रुपए के मुकाबले अप्रैल में लगभग 5% कम होकर 38,440 करोड़ रुपए पर आ गया. भारतीय म्यूचुअल फंड संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आलोच अवधि में कुल एसआईपी की मात्रा 3% कम होकर 31,115 करोड़ रुपए दर्ज हुई. लेकिन संपूर्ण म्यूचुअल फंड उद्योग पर नजर डालें तो मार्च के 2.39 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी के मुकाबले अप्रैल में स्थिति एकदम पलट गई और 3.22 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश दर्ज हुआ. यह सुधार प्रमुख रूप से डेट फंड योजनाओं और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सभी श्रेणियों में बेहतर निवेश के बल पर आया.
4: Let's talk about oil. That holds the key to the world's economy. Well, global crude oil prices rose today amid fears of prolonged supply constraints after US President Donald Trump described Iran's latest peace proposal as totally unacceptable. Brent crude was trading around 2.6% up at $103.89 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading 2.6% up at $97.90 per barrel when reports last came in. And a look at the bullion market. Well, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.1% down at 1,52,960 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.4% higher at 2,66,120 rupees per kilogram a short while ago.
2: Udhar multi-commodity exchange mein taza samachar milne tak June anubandh wala sona 0.1% से अधिक गिरावट दर्ज करता हुआ 1,52,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.5% की वृद्धि से 2 लाख

0: 65,801 रुपए प्रति किलो पर थी।
1: And India's urban unemployment rate, UR, for persons aged 15 years and above eased to 6.6% in January to March quarter of this year from 6.7% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, quarterly labour force and unemployment data, unemployment rate in rural areas edged up marginally to 4.3% from 4%.
0: और अगर हम तेल की बात करें तो पिछले सप्ताह 6% गिरावट आई थी कीमतों में। सो आपको लगता है कि आज का एक नीजर्क रिएक्शन है और शायद हम कुछ स्टेबलाइज होते हुए देखें कीमतों को?
2: सुनो, एक छोटा सा स्पष्टीकरण जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर के था, वहां पर स्पष्ट कर दूं कि आप शॉर्ट टर्म जो लॉसेज होते हैं उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट कर सकते हो। उसके 8 साल तक के लिए अगर आप नहीं कर पाते तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न था कि आज का जो कच्चे तेल के बाजार में, वो वाजिब तौर पे मुझे लगता है कि वो नीजर्क ही था।
0: समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं शिशिर। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, और श्रोताओं के भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: All right, thanks, Shishir. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines once again. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 1,300 points, Nifty closes at 23,816. Union Minister Ashwini Vaishnav urges citizens and businesses to reduce expenditure on items requiring foreign exchange, and global crude oil prices rise. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Sonu Sood, and our expert Shishir Sinha signing off for now. So, namaskar.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में

0: भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Maha Puja followed by the Kumbh Abhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrut Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiva. In a social media post after the visit to the temple, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
0: Azadi ke samay, Sardar Sahab ne 500 se jyada riyasaton ko jodkar ek Bharat ka aadhunik swarup ghada tha. तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sardar Dham Hostel at Varodra a short while ago. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार
1: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
2: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशय किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 1994-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें

0: साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एकजुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं।
1: जी
0: सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी। बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जाम साहब हो, या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए कि भी एक स्थान बने। उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5,000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था।
1: जी
0: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं। और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा तो
1: जी
0: लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1,000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर, उसको तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है।
0: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सी शोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं। कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी है,
1: जी
0: मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है कि वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए इसलिए भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक

0: चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
2: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहाँ आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
2: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
0: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है, और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
2: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
1: जी।
2: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं। तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये वक्त है सांस झले का और सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

खाने का सिलसिला तो बड़ा कॉमन सा हो गया है अब, और ऐसा लगता है ना कि अगर कोई रूठे ना तो हमारी वैल्यू नहीं होती है। कई बार तो झूठ मूठ का रूठ जाइए जनाब, अपनी वैल्यू जानने के लिए, अपनी अहमियत को जानने के लिए, कि वाकई कोई हमें मनाने आएगा भी या नहीं। अगर नहीं आता है ना तो जान जाइए कि बस ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है उस रिश्ते में। अगर आपके रूठने से किसी को फ़र्क पड़े तो जानिए कि दोस्ती सच्ची है, जैसे कि FM गोल्ड की दोस्ती हमेशा सच्ची है आप सभी के साथ। फिलहाल एक और बेहतरीन सा गीत आप सभी के लिए, और अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म शागिर्द से था, आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की थी, और अब फिल्म औलाद से ये बेहतरीन सा गीत आप सभी के लिए।

साक्षी सिंह बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

इस वक्त, अब ये वक्त नहीं है कि हम और ज़्यादा बात करें, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और अभी आपने जो गीत सुना वो फिल्म पराया धन से था, आवाज़ थी आशा भोसले की। और अब वक्त है समाचारों का।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
5: जैसे?
0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
5: तो लेन देन?
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
5: ओ,
0: जैसे UPI से।
5: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी निर्माणाधीन क्षेत्र पर 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट को अनिवार्य किया और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में भाग लिया। ये आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गुजरात के सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर की आस्था कभी नहीं झुकी और हर बार देश की आध्यात्मिक शक्ति ने स्वयं को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
7: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देती हूँ, जिनके मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी, जिसके विजन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे अध्यात्म को, सनातन को बचाने का काम, उसे सजाने और संवारने का काम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम, उसके विकास का भी काम कर रहे हैं।
6: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन परंपरा ने हजारों वर्षों के संघर्ष और आक्रमणों के बावजूद अपनी पहचान और आस्था को जीवित रखा है।
8: ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन प्रतीक है कि कितने भी आक्रांता आक्रमणकारी आ जाएं, अपनी शक्ति के बल पर मंदिरों और आस्था केंद्रों को नष्ट करने का सपना भी पाल लें, लेकिन समय के साथ सनातन अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा रहेगा और जो भी आक्रांता आक्रमणकारी बुरी नीयत के साथ आएंगे उनकी पराजय ही होगी।
6: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अवसर पर श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने आज बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विशेष एम्बुलेंस पूरे शहर में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले बीमार और असहाय लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम में लाकर उनका उपचार, देखभाल, भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: ये 5 दिवसीय अभियान आज से 15 तक राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राजधानी के सड़कों, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर रह रहे असहाय, बीमार बेसहारा महिलाएं और पुरुषों का बचाव किया जा रहा है। अभियान के लिए 19 एम्बुलेंस, 10 सहयोगी वाहन, लगभग 100 सदस्यीय स्टाफ और 50 स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। इस अभियान में विशेष रूप से टीबी, कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। बचाव किए गए लोगों के लिए आश्रम में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान के पहले चरण में अब तक लगभग 20 लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी और सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 24 घंटे कार्य करने वाला विशेष वन विंडो सिस्टम भी विकसित किया गया है। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
6: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अपना आश्रम मानवता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।
10: अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है, जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है। और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं।
6: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने आज सिविल लाइन्स जोन के अंतर्गत बादली क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। महापौर ने क्षेत्र के निवासियों, दुकानदारों और व्यापारियों से भी संवाद किया और उनसे अपनी दुकानों के बाहर कूड़ेदान रखने की अपील की।
11: आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए, हमें किसी पे दबाव या किसी को हर्ट करने का हमारा मंशा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली खूबसूरत बने, हमारे क्षेत्र खूबसूरत बने, हमारे दुकानदार भाई भी हमारा सहयोग करें, हमारे लोग भी हमारा सहयोग करें, कूड़ा सेग्रीगेट करें, इससे जो है दिल्ली में कूड़े की समस्या निस्तारण है जल्दी से हो सके।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैज्ञानिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैक्सीन विकास तक भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो देश की नवोन्मेषी सोच और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रौद्योगिकी, सतत विकास और आत्मनिर्भरता पर का समन्वय ही भारत के शहरी भविष्य को दिशा देगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और बौद्धिक आत्मविश्वास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 सशक्त अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। डॉ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है।
12: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
6: गृहमंत्री आशीष सूद ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया है। आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिल्ली अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने अग्नि सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सूद ने आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमता, अग्नि सुरक्षा योजना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और नए वाहनों की खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों और उद्योग जगत से व्यापक समर्थन मिला है। परिवहन विभाग के अनुसार लगभग 700 हितधारकों ने इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं दी। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों में करीब 400 प्रतिक्रियाएं आम नागरिकों से जबकि लगभग 200 सुझाव उद्योग जगत से मिले हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों से भी 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में प्रति एकड़ 1,25,000 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पार्क और उद्यान समिति के माध्यम से RWA, गैर सरकारी संगठनों और पंजीकृत सोसाइटियों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
13: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी CND साइट्स पर 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गाजियाबाद से सराय कालेखां कैरिजवे के बीच रखरखाव और सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। इस कार्य के चलते संबंधित मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 65 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीमों के लिए मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी में आज दिनभर आमतौर पर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में

0: कर लिया। कहा, सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने बीमार और असहाय लोगों के लिए एक विशेष सेवा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
5: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
5: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
5: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
6: पापा, लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ,
5: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम परिसर का आज लोकार्पण किया। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रमों का हिस्सा बनना उनके लिए हमेशा बहुत खुशी की बात रही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे वे घर लौट आए हैं।
8: आपके बीच आकर समाज की शक्ति का एहसास होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कहीं पर वास्तविक बदलाव होता है, वो समाज की सामूहिक ताकत से ही होता है। खासकर जिन जिन समाजों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, शिक्षा में समान भागीदारी को अपना लक्ष्य बनाया है, वो समाज हमेशा आगे बढ़े हैं, उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
7: इससे पहले गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है।
8: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1,000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश में 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का LPG भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है।

0: को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल सरकार के गैर वैधानिक बोर्डों, संगठनों, निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों का कार्यकाल आज तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं भी आज समाप्त कर दी गयी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 72 रन बना लिए थे। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiva. In a social media post after the visit to the temple, Prime Minister Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath temple opened in 1951 in the presence of the then president Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
3: Azadi ke samay Sardar Sahab ne 500 se zyada riyasaton ko jodkar एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी also inaugurated the Sardar Dham Hostel at Vadodara a short while ago. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said that the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. In Assam, the stage is set for the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term tomorrow. Speaking to the media, caretaker Chief Minister and Chief Minister Designate Dr. Himanta Biswa Sarma informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nabin will attend the swearing-in ceremony tomorrow. He added that several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states will also attend the event. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today said that corporate funding is essential for habitat restoration, technology-driven monitoring and community-based conservation.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग होगा राग केदार।

जी हाँ, राग केदार कल्याण थाट से उत्पन्न हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख और मधुर राग है, जो अपनी चंचलता और भक्ति रस के लिए जाना जाता है। यह रात के प्रथम पहर में गाया जाता है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ मधुरिमा में आज हम राग केदार का जिक्र कर रहे हैं और राग केदार का वादि स्वर मा और संवादि स्वर सा है। आरोह की अगर हम बात करें तो स म प म प ध नी नी ध प ध स अवरोह स नि ध प ध प म रेसा है। और अगर हम इसके पकड़ की बात करते हैं तो ग म रेसा य म प ध प म रेसा है। और गाने का समय जैसे हमने आपको बताया रात्रि का प्रथम पहर है। यह राग भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसमें प्रेम करुणा आध्यात्मिक भक्ति का भाव प्रधान रूप से होता है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये गीत।

जी हाँ, वक्त धीरे धीरे से मिटने को है और चलते चलते हम इस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देते हैं। इस राग में दोनों जो स्वर है मध्यम और तीव्र का प्रयोग होता है और जो शेष स्वर है शुद्ध होते हैं। इसका गाने का समय हमने आपको बताया। इसका वर्जित जो स्वर है उसमें रे और गंधार ग अवरों में केवल गंधार गा का प्रयोग होता है हमारे। और जैसे कि ये राग एक चंचल प्रकृति का राग है और इसमें वक्र स्वरों का प्रयोग काफ़ी सुंदरता से किया गया है। और जैसा कि आपने बेहतरीन नगमे जो अभी आपने सुने ये बहुत कम है, सिर्फ एक झलक है। हमारी भारतीय सिनेमा में इस राग पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन गीत बने हुए हैं। कभी वक्त होगा तो इस राग पर और गीत हम ज़रूर आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये वक्त अब यहीं समेटने का है इस प्रोग्राम को, और मैं विमलेश फिलहाल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो हम हर दिन बात करते हैं कि हमारे पास अच्छी खबर है खेल की, लेकिन आज हालांकि हमें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि हमें फुटबॉल में निराशा हाथ लगी है, चाहे वो लड़कों का हो या लड़कियों का हो। लेकिन इसके साथ ही हमने मुक्केबाजी में अच्छा किया है, जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम। अंडर 15 लड़कों में 6 मुक्केबाज और लड़कियों में 9 मुक्केबाज फाइनल में। कोमल कोहर ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के पहले दिन कांस्य पदक जीतकर मेजबान भारत के पदकों का खाता खोला। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की नजरें कल से शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन में व्यक्तिगत प्रदर्शन पर। तो फिलहाल जो मैच चल रहा है आईपीएल का दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच, तो शुरुआत इसी से करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच जारी है और ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है, और दोनों ही टीम के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है, जहां दिल्ली के लिए करो और मरो का मैच है और वो इसे जीतकर प्लेऑफ की संभावनाओं को जिंदा रखना चाहेगी। वहीं पंजाब की नजर जीत के साथ वापस शीर्ष पर पहुंचने की होगी।
1: देखिए, जैसे आपने कहा डीसी मेरे ख्याल से ऑलरेडी आउट है। वो ऑलरेडी आउट में इसलिए बोलता हूं क्योंकि जैसे लीडर बोर्ड की स्थिति है अभी जिसकी कि टॉप 3 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे हैं और वो सारी टीमें 11-11 मैचेस खेल चुकी हैं। पंजाब के पास चांसेस ठीक है क्योंकि वो सिर्फ 10 मैच में उनके 13 पॉइंट है, एक पॉइंट पीछे हैं लीडर से, लेकिन उनके पास एक मैच भी है हाथ में। लेकिन डीसी के पास क्या है कि मान लीजिए कि वो आज का मैच भी जीतते हैं और उसके बाद के जो 2 मैच वो दोनों भी जीत जाते हैं, तो भी वो सिर्फ 7 जीत के साथ 14 पॉइंट पर पहुंचेंगे, और 14 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है 4-5 टीमें, अगर हम कहें कि 6 टीमें ऑलरेडी 12 पॉइंट या उससे ऊपर हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो उनके लिए। तो और जैसे कि पंजाब किंग्स खेल रही है, कुछ मैच हार के आ रही है, उनका शुरू का रन उनका बहुत अच्छा रहा, 7 मैचेस में से कोई भी नहीं हारे थे वो शुरू के, लेकिन अब उनको थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। लेकिन ये वाला जो मैच है, क्योंकि उन्होंने डीसी को जिस अंदाज में हराया था, हाईएस्ट चेस था उनका जो मैच इनका जो कि यहां पे हुआ था दिल्ली में जो हुआ था मैच, यादगार मैच, सबसे हाई स्कोरिंग जो चेज होता है वो हमको देखने को मिला। तो क्योंकि उनकी बैटिंग जो है इतनी अच्छी है, टॉप हेवी है बैटिंग, बॉलिंग में मुझे वो थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं लगते हैं, लेकिन काफी सारी टीम्स का भी यही हाल है कि पूरा फोकस उनका इतना ज्यादा है बैटिंग के ऊपर, इसीलिए शायद हमने देखा है कि आईपीएल के इस सीजन में जितनी 200 रन बने हैं जितनी बार और जितने भी 200 प्लस के टारगेट चेज हुए हैं, ये हमने इससे पहले किसी आईपीएल के एक सीजन में नहीं देखा।
0: बिल्कुल, और हम बार बार ये बात भी दोहरा रहे हैं कि इस बार का आईपीएल बेहद रोमांचक है। जहां हम बात करते थे कुछ टीमों की जो हमेशा बेहतर करती थी, अब हम उनकी वापसी की बात करने लग गए हैं। तो अब उसी तरह कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। इस मैच का पूरा हाल जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की ओर से तिलक वर्मा और नमन धीर ने मोर्चा संभाला। नमन ने 32 गेंद में 47 और तिलक वर्मा ने 42 गेंद में 57 रन की पारी खेलकर टीम को 166 के टोटल तक पहुंचाया। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जवाब में आरसीबी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम ने 39 के स्कोर पर विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार के विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बीच के ओवरों में कृणाल पांड्या ने पारी को संभालते हुए 46 गेंदों में 73 रन बनाए। अंतिम 3 गेंदों में आरसीबी को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, तब भुवनेश्वर कुमार ने छक्का मारकर मैच को अपनी ओर खींच लिया और आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर रसिक सलाम ने टीम को जीत दिला दी। भुवनेश्वर कुमार को शानदार प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इस हार के बाद प्लेऑफ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही आईपीएल से बाहर हो चुकी है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये मैच भी बेहद रोमांचक रहा आखिरी ओवर में जिस तरह का मैच खेला गया।
1: देखिए ये मैच यकीनन ऐसा था कि आरसीबी को ये मैच कम से कम एक ओवर रहते जीत जाना चाहिए था, लेकिन उनके जो जिस अंदाज में तीन विकेट दो ओवर्स के बीच में 16वें और 18वें ओवर को मिला लें हम, तो तीन विकेट उनके आउट हुए और 16वें ओवर में तो दो बॉल में दो विकेट गए और उससे उनको एक झटका लगा। और उसके बाद जो इमीडिएट जो 19वां ओवर था, जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ तीन रन दिए, इससे हालत ये हो गई कि उनको आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। और राज बावा जिन्होंने की गेंदबाजी नहीं की है इसमें कोई ज्यादा, पहली बार उन्होंने लास्ट ओवर डाला और 15 रन कंसीड हो गए क्योंकि उसमें एक नो बॉल और तीन वाइड भी शामिल है और लास्ट बॉल पे दो रन लेके जो जिस अंदाज में जीते, बहुत अच्छा रहा गेम तो। और आरसीबी डिजर्व करती थी ये मैच क्योंकि अगर आपने एक एमआई जैसी टीम को 166 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन एमआई ने कोशिश बहुत अच्छी की रोकने की और एमआई ऑलरेडी बाहर थी, तो वो अभी जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ टॉप टीम्स हैं, यू नो फाइव टाइम चैंपियन है एमआई, वो भी स्ट्रगल कर रही है, केकेआर स्ट्रगल कर रही है, सीएसके ने फिर भी एक रिकवरी की है, तो ये जो रेप्यूटेड टीम्स हैं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें एक टीम एमआई। तो आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, कल उन्होंने जिस अंदाज में जीते वो लास्ट बॉल पे, और आप देख सकते थे जैसे विराट कोहली वगैरह ने सेलिब्रेट किया, उनको ये जीत कितनी जरूरी थी क्योंकि 2024 के बाद ये पहली बार हुआ था कि दो मैचेस आरसीबी लगातार हारी थी
0: जी।
1: लास्ट सीजन बिल्कुल भी, मतलब एक मैच हारे होंगे, दो मैच लगातार नहीं हारे, और अब जो हारे वो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था वो। और कल का मैच भी ऑलमोस्ट निकल गया था हाथ से, आखिरी बॉल पे दो रन का मिलना बहुत रेयर होता है कि आप दो रन बना के जीते, एक रन से चौके से छक्के से जीत सकते हैं, तो बहुत ही रोमांचक मैच
0: बिल्कुल। और इसी बीच क्रिकेट से एक ये भी खबर आई है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो एक दिवसीय टीम रैंकिंग है उसमें भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, हालांकि उनके कुछ अंक घट गए हैं, एक अंक का नुकसान हुआ है, 119 अंक से 118 अंक हो गए हैं उनके। इससे पहले हमने T20 में भी देखा था भारत ने किस तरह से शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा, तो इस तरह इसे देख के हम क्या कहेंगे क्रिकेट को लेकर के हमारी भारतीय खिलाड़ी, हमारी जो पूरी टीम है वो जुझारू है।
1: वो तो है ही है, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं तो आई एम सरप्राइज कि एक पॉइंट कम कैसे हो जाता है, क्योंकि आप जब आप खेल ही नहीं रहे हैं, ये आपका 52 वीक्स की रैंकिंग है ये जो है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 2025 के इसी हफ्ते में हमारा पॉइंट कितना था और हमने उसको रिटेन किया कि नहीं किया, तो इसीलिए वो एक पॉइंट का लॉस है क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं तो आप गेन तो नहीं कर सकते हैं पॉइंट, तो आप वहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ टीम्स हैं जो अभी खेली हैं हाल ही में, तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो जो आपकी रैंकिंग होती है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं
0: जी। आज से ही शुरू हुआ है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। कोमल कोहर ने जहां इस चैंपियनशिप के पहले ही दिन कांस्य पदक जीतकर मेजबान भारत के पदकों का खाता खोल दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, और पहले ही दिन कोमल ने 18 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और ये जो कोमल है ये इनकी मीराबाई चानू की जगह खेल रही है
1: जी। देखिये, चानू जो है वो इंजरी से भी स्ट्रगल किया, उन्होंने वेट चेंज किया।

0: उनके इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके लाइफ में, क्योंकि अब एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है साल, तो उसके लिए उनकी जो एक प्रिपरेशन है पूरा, वो उनका पूरा का पूरा फोकस वहाँ पे है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, जब भी हमारे लाइट वेट और मिडिल वेट में परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहती है, और खासकर विमेन में भी अगर आप देखें, लाइट वेट कैटेगरीज में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। बहुत कम आपको मिलेगा, जैसे यू नो मल्लेश्वरी थी, वो थोड़ी सी हैवी वेट वाले में थी, मिडिल वेट से ज्यादा थी वो। लेकिन अगर आप कुंजा रानी को देखें या कोई भी, अगर हम उनसे नीचे वाले जितने भी वेट लिफ्टर्स अभी हम जैसे देखते हैं, मीराबाई चानू जो है, ये सारे लाइट वेट कैटेगरीज में, तो वहां हमारे बेस्ट चांसेस हैं। तो जो ये टूर्नामेंट जब भी शुरू होता है कोई चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग की, वो लाइट वेट से शुरू होती है, तो हमारे बेस्ट जो चांसेस होते हैं मेडल जीतने के, वो पहले शुरुआती कुछ दिनों में होते हैं
1: जी।
0: तो ये जो मेडल की जो शुरुआत हुई है, मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी और भी ज्यादा मेडल्स आएंगे इसमें।
1: बिल्कुल, और हालांकि ये जो वर्ग था महिलाओं का 48 किलोग्राम जिसमें हमें कांस्य पदक मिला है, तो वो ओलंपिक की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रतियोगिता है वो आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं?
0: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ से मेडल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कॉमनवेल्थ को अगर हम पहले देख लें, क्योंकि ये आपने अभी जो बात की, आप एशियन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में कुछ कैटेगरीज को छोड़ के वेटलिफ्टिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो वहां पे हमारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं काफी मेडल्स आने के। और एशियन में थोड़ा सी मतलब डिफिकल्टी है, क्योंकि चाइना है वहां पे, और उनके जो लिफ्टर्स हैं हर कैटेगरी में वो टॉप थ्री के लिए ही आते हैं, अगर आप एशियन गेम्स देखें या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स देखें या ओलंपिक्स देखें। तो इसीलिए ये वाली चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आने वाले टाइम में 26 में इसी साल में हमें जो असली चैंपियनशिप है, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स, वहां पे हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहेगा।
1: अभी हमने जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में ही जिक्र किया था कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहा खेल जगत से, क्योंकि महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप में क्वार्टर फाइनल में जाने के बाद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, और इसके साथ ही फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में अपनी जगह भी पक्की नहीं कर पाई, सपना टूट गया, करारी शिकस्त मिल गई मेजबान टीम चीन से। और वहीं जेद्दा में भी जो AFC अंडर 17 मेंस एशिया कप है, वहां भी भारत को कल उज्बेकिस्तान से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। तो जेद्दा की टीम तो हालांकि नहीं, जेद्दा में वहां हमारी भारतीय टीम तो खैर क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन विमेंस टीम ने इतिहास रचा था, पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था, उसके बाद इस तरह का हार काफी निराशाजनक है।
0: देखिए, मेरे ख्याल से मतलब मैं तो एक आशावादी इंसान हूं, मुझे तो ये लगता है अगर आप पहली बार क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल के इतने करीब पहुंचे, मेरे ख्याल से वो एक बड़ी चीज, मतलब वहां तक आप पहुंचे पहली टीम। और ठीक है, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, एंड विमेंस जो फुटबॉल है, गर्ल्स फुटबॉल अगर मैं कहूं, अभी हमें बहुत आगे जाना है। मेंस फुटबॉल इतने सालों से हम देख रहे हैं, अभी भी हम 100 के नीचे नहीं आ पाते हैं हमारा जो रैंकिंग है, तो विमेन के साथ तो हमको बहुत ज्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा। और मुझे ये आशा है कि हमारी परफॉर्मेंस विमेंस में या गर्ल्स में कॉन्टिनेंटल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे मेंस से बेटर होने वाली है।
1: जी बिल्कुल, और ये आशा के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। और ये जो हमारी टीम की हमेशा एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो चलते रहती है, तो ISL भी इस बीच जारी है, ISL फुटबॉल लीग, जहां ईस्ट बंगाल एफसी और पंजाब FC के बीच मुकाबला जारी है, और अभी जो ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला 0-0 की बराबरी पर है, यानी कि दोनों ने अभी तक एक भी गोल नहीं किया है। और कल के खेले गए मुकाबलों में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने चेन्नई FC को 4-1 से हरा दिया, जबकि केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मद FC को 3-1 से हराया। वहीं जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है फुटबॉल का, फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हरा कर 2025-26 का ला लीगा खिताब भी जीत लिया है। हालांकि हमें फुटबॉल से अच्छी खबर नहीं मिली, लेकिन हमने बात की थी कि मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में हमने अच्छा किया है, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 वर्ग के मुक्केबाजी चैंपियनशिप खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। अब तक अगर हम अंडर 15 लड़कों की बात करें तो भारत के 6 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 ने कांस्य पदक हासिल किया है, और वहीं अंडर 15 की 9 लड़कियों ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली है।
0: देखिए, मैं अगर इसको ये कहूं कि जो परफॉर्मेंस रही है ये कमाल की, मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने जितने पार्टिसिपेंट्स भेजे
1: जी,
0: और उसमें से मान लीजिए टोटल कॉम्पिटिशन जो हैं वो हैं आपके 56, जो उस 56 कॉम्पिटिशन्स में हमारे 44 मेडल पक्के हो गए
1: जी।
0: तो आप सोचिए कि जैसे आपने कहा शुरू में कि विमेन्स की बात कर रहे हैं हम पहले, यानी गर्ल्स की, गर्ल्स अंडर 15 में 15 मेडल थे हमारे, जो 15 लोग थे उसमें से 14 मेडल कंफर्म्ड हैं।
1: बिल्कुल।
0: बॉयज में 15 मेडल में से 13 मेडल कंफर्म्ड हैं, बॉयज में से जो 13 मेडल्स है उसमें से 5 कंफर्म्ड हैं, और गर्ल्स में अगेन अगर हम कहें अंडर 17 में तो 13 में से 12 कंफर्म्ड है
1: जी।
0: तो ये जो कंसिस्टेंसी है, जैसे मैंने कहा कि दोनों में अगर हम देखें, अभी आपने से थोड़ी देर पहले विमेंस मतलब गर्ल्स की जो टीम थी जिन्होंने कहा बॉक्सिंग की बात इसकी फुटबॉल की बात की थी
1: जी,
0: और अब हम इमीडिएटली उसके बाद हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की बॉक्सिंग की, बॉयज की बॉक्सिंग की, इसमें भी कंपैरेटिवली गर्ल्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो 44 मेडल्स कन्फर्म्ड हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब मिला के। अब ये देखना है कि फाइनल्स में हम कितने, ये जितने लोग फाइनल में हैं अभी उसमें से कितने हम इसको चांसेस को कन्वर्ट करके एक एश्योर्ड सिल्वर को कन्फर्म गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं।
1: बिल्कुल। और आज ही 8 भारतीय अंडर 17 मुक्केबाजों ने भी सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 15 के फाइनल मुकाबले 14 को और अंडर 17 के 15 मई को खेले जाएंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को

0: ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और

0: अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह के से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है। चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: शुरू हुई मई के महीने में जी,
2: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी के ब्लास्ट होने के से लगी। उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है।
0: जी, शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है, किस तरह से आग को पाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं, लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे, किस तरह से जो है

0: काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
2: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पर आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर्स लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी, राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
3: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या अभी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपने ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
4: राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में, हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसमें सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके 60 एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
4: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे, उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
2: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए है कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है, तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
2: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है, तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
5: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे नमस्कार। कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं, तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की

0: दिलाना चाहूंगा, जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: उस धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं,
0: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
0: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
0: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद
2: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में 1 हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
2: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
2: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोग के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहां बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है और बुझती नहीं है, गांठ होती है, पानी डालें, ये बहुत 24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
2: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन ले, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार, स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल।
3: हाँ सर, नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है।

0: पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बनके खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। श्रीपा जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो समझे पानी की कमी है आजू बाजू में, कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते कि वहां पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखे, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा, अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है लीकेज

0: नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
0: तो उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखें, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
2: हाँ कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूं, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं जी। प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं अगर आगेल आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए, इसीलिए एमसीबी, एलसीबी, एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर यह आपने लगाया है शॉर्ट

0: सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा मिनीचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी और प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
3: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की आश्वस्त आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
3: असम में कल हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। एसबीआई की मई 2026 की शोध रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक

0: In IPL cricket, chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals were 38 for 3 in 4.5 overs at Dharamshala when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध में। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया।

0: शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: संक्षिप्त रिपोर्ट को संबोधित करते हुए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर और चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
5: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
6: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम और अस्थिरता को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर गतिरोध में फंसे हुए हैं। हाल के दिनों में गोलीबारी, जहाजों और खाड़ी देशों पर हमले और इसराइल तथा लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला के बीच नए सिरे से झड़पें हुई हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर इस महीने की 13 से 15 तारीख तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की। लगभग 9 वर्ष में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली चीन की यात्रा होगी। ये यात्रा ईरान से व्यापार और जारी संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हो रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ से नंगरहार प्रांत में लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी गई है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। IOM के अनुसार बाढ़ में कई लोगों के घर, खेती की जमीन और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। संगठन ने कहा कि लगमान और कुनार प्रांतों में भी राहत कार्य जारी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हालांकि आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध जारी। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और

और इस सुहानी रात में आप हमेशा की तरह सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां शुरू हो चुका है कार्यक्रम हर सिंगार, जिसमें आप सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत जहां बयां होती है प्यार मोहब्बत की कहानी। स्वीकार कीजिए अभिनीत शुक्ला का नमस्कार। ये गीत था फिल्म नौशेरवां आदिल से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल

परवेश शमसी के और संगीत चतलकर रामचंद्र का। अगले गाने में दिल की कहानी बस कुछ ही शब्दों में। 1989 की द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले, शरद कुमार और अमिताभ बच्चन के भी कुछ कुछ अंश आप सुन लेंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कपूर की आवाज में ये गीत था 1963 में रिलीज हुई फिल्म गोदान से, जिसमें शब्द रचना थी अनजान की। वहीं इसे सुरों से सजाया था रविशंकर ने। खूब उजड़ा खूब सवरा आफतों से ये जहां, कि खूब उजड़ा खूब सवरा आफतों से ये जहां, ता कयामत ए सना ये आखिरी है जिंदगी। सना हाशमी की कलम से निकले ये शब्द अगर आपको अच्छे लगे तो गीता दत्त और हेमंत कपूर का गाया, हेमंत कुमार का गाया फिल्म दुनिया झुकती है से ये गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा, या आता ही होगा। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया हेमंत कुमार ने ही।

1967 की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से था ये गीत, मुकेश और शारदा का गाया हुआ। बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अब समय तो इशारा कर रहा है कि हर श्रृंगार कार्यक्रम के भी जाने का वक्त आ रहा है, लेकिन आपके जैसे ही हम भी चाहते हैं कि ये जरा सा ठहर जाए, एक और गीत सुनाकर जाए। तो चलिए आपके लिए फिल्म अजनबी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तो साथियों, इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ ही आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसे प्यार से हम कहते हैं, जी हाँ, हर श्रृंगार, वो आपको छोड़कर जाएगा हिंदी और अंग्रेजी के समाचारों के साथ। लेकिन आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद आपका और हमारा ये साथ फिर से शुरू होगा। तो सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। जल्द ही लौटते हैं यहीं पर FM गोल्ड चैनल पर। सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी

वैसे आपको बुलाना हमारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि हमें तो पता है आप अपने पसंदीदा एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा ही जुड़े रहते हैं। समय है 11:14:30 और आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत शुरू हो चुका है, जिसमें मैं अभिनीत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। पहला गीत था फिल्म मधुमति से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, और अगला गाना फिल्म पत्थर के सनम से मोहम्मद रफी का गाया, मंजू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और ओपी नैयर द्वारा संगीत में पिरोया गया।

गीता दत्त के गाए इस सुरीले चेतावनी वाले गीत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिर भी बता दें कि फिल्म का नाम है आर पार, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार ओपी नैयर। उसका राजा मैं वो मेरे दिल की रानी हो गई, कि उसका राजा मैं वो मेरे दिल की रानी हो गई, ये मुकम्मल इश्क की मेरी कहानी हो गई। शाहरुख साहिल तुलसीपुरी द्वारा लिखी गजल के कुछ शब्दों के बाद आइए सुने फिल्म चलते चलते से अमित खन्ना का लिखा ये गीत, सुलक्षणा पंडित और शैलेंद्र सिंह की आवाज में, जिसे शुरू से सजाया बपी लहरी ने।

1968 में आई राज कपूर की फिल्म दीवाना से आपने एक गीत मुकेश की आवाज में सुना, जिसमें शैलेंद्र के बोल जीवन की कई परेशानियों का हल बता जाते हैं। इसमें संगीत था शंकर जयकिशन का। और अब आगे आपको सुनाएंगे जीवन और समाज के ताने बाने पर आधारित एक और गीत मोहम्मद रफी की आवाज में 1956 की फिल्म शिरीन फरहाद से। गीतकार तनवीर नकमी और संगीतकार एस मोहिंदर।

दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो, कुछ रोज में भर जाते हैं। जावेद अख्तर के लिखे शब्दों से उम्मीद मिलती है, तो वहीं आनंद बख्शी की कलम से निकला किशोर दा का गाया ये गीत सीखते जाता है। फिल्म का नाम नमक हराम, संगीत दिया आरडी बर्मन ने। अगला गीत फिल्म जाल से हेमंत कुमार की आवाज में, बोल साहिल लुधियानवी के, इसे संगीतबद्ध किया।

जिंदगी का मुकाम तो ऊपर से तय होकर आता है, उसके अलावा वो किसी मंजिल पर रुकती नहीं, बस चलती ही जाती है। ये गीत था 1967 में आई हमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीत रवि का। फिलहाल गीत मेरे मनमीत पहुंचने वाला है आज की अपनी मंजिल तक, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ जज्बात फिल्म मिस बॉम्बे के इस गीत के माध्यम से सीधे आप तक। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, प्रेम धवन का लिखा और हंसराज बहल की बनाई धुन के साथ।

चाहते तो हम भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी ये मुलाकात बस चलती ही रहे, लेकिन क्या करें, समय भी हमेशा चलता ही रहता है और उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले किशोर कुमार की आवाज में सत्य पे सत्ता फिल्म से आनंद बख्शी का लिखा और आर डी बर्मन के दिए संगीत से सजाए गीत आपको सुनाते जाएंगे।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत की ये यात्रा आज के लिए समाप्त होती है, लेकिन आगे भी आप गीतों का सिलसिला जरूर सुन पाएंगे एफएम गोल्ड पर। वो भी कैसे? जी बिल्कुल, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करके या न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। इसी के साथ अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, आप रखिए अपना अच्छे से ध्यान, आगे सुनिए समाचार, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री ओल्फर क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी बेरोजगारी दर इस वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही में घटकर 6.6% हो गई। इससे पिछली तिमाही में यह दर 6.7% थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान का नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर 5 विकेट पर 210 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 211 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई। सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई। गर्दिशे खून रगों में तेज हुई, दिल को छूकर गुजर गया कोई। सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बन के बिखर गया कोई।

मेरी वादी में वो एक दिन यूं ही आ निकली थी। मेरी वादी में वो एक दिन यूं ही आ निकली थी, रंग और नूर का बहता हुआ धारा बनकर। मेरी वादी में वो एक दिन यूं ही आ निकली थी, रंग और नूर का बहता हुआ धारा बनकर। महफिले शौक में एक धूम मचा दी थी उसने, खलवते दिल में रही अंजुमने आरा बनकर। शुलाए इश्क सरे फर्श को जब छूने लगा, उड़ गई वो मेरे सीने से शरारा बनकर। मेरी वादी में वो एक दिन यूं ही आ निकली थी, रंग और नूर का बहता हुआ धारा बनकर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा किसी ने कि मुझे तो इंतजारे इश्क में भी लुत्फ आता है, मुझे तो इंतजारे इश्क में ही लुत्फ आता है, किसी की चाहतों का रंग हर धड़कन पे तारी हो, अजब सा कर्ब बेचैनी मुसलसल बेकरारी हो, निगाहें मुंतजर फुरकत कसक और आह ओ जारी हो, मुझे तो इंतजारे इश्क में ही लुत्फ आता है, जहां किसी की चाहतों का रंग हर धड़कन पे तारी हो।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गम की गर्मी से पिघलते रहे दिल, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। सुबह के डर से आंख लग न सकी, रात भर करवटें बदलते रहे, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। जहर था जिंदगी के कूजे में, जानते थे फिर भी निगलते रहे, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे।

है इश्क तो फिर असर भी होगा, है इश्क तो फिर असर भी होगा, जितना है इधर उधर भी होगा। माना कि ये दिल है उसका पत्थर, पत्थर में निहा शरर भी होगा, जितना इधर है उधर भी होगा, है इश्क तो फिर असर भी होगा।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में 1:10 पर, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय

0: पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजा गया नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 211 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, रात की खामोशी में कुछ एहसास और भी गहरे हो जाते हैं, और जब बात मोहब्बत की हो तो दिल खुद ब खुद उन पुराने लम्हों में खो जाता है। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसे सुनकर हमें भी उन पुराने दिनों की याद हो आती है। तो चलिए, फिल्म है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

इश्क जब हद से गुजर जाए तो दिल सवाल नहीं करता, बस महसूस करता है। और कुछ ऐसे ही जज्बातों से भरा है हमारा अगला गीत, जहां मोहब्बत भी है, तड़प भी है और दीवानगी भी है।

0: दोस्तों, कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, केवल बातें होती हैं, एहसास होते हैं और दिल को सुकून देने वाली एक प्यारी सी मौजूदगी होती है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म है सच्चा झूठा, लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: जी हाँ, गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, मोहब्बत की एक खूबसूरत अदा ये है कि जब ये दिल किसी से लगता है तो लग ही जाता है, और कब लगता है, कैसे लग जाता है पता ही नहीं चलता। और जब अगर कोई दिल लगा ले और सामने वाला मना कर दे, तब कुछ इस तरह की शरारती हरकतें होती हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है मर्यादा।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

वक्त का झोंका जो सब पत्ते उड़ा कर ले गया, वक्त का झोंका जो सब पत्ते उड़ा कर ले गया, क्यों ना मुझको भी तेरे दर से उठा कर ले गया। रात अपने चाहने वालों पे था वो मेहरबान, मैं न जाता था मगर वो मुझको आकर ले गया। वक्त का झोंका जो सब पत्ते उड़ा कर ले गया, क्यों ना मुझको भी वो तेरे दर से उठा कर ले गया। और बस इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी रात सुरमई में। फिलहाल कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपना का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े

0: व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नागरिकों और विदेशी नागरिकों से कानून का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ये अपील ऐसे समय की है जब सरकार अवैध प्रवासन को रोकने के प्रयास तेज कर रही है। अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में रामाफोसा ने देश के कुछ हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आपराधिक घटनाओं की निंदा की। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that the situation has the minimum possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of the West Asia crisis. These include reducing

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। दोस्तों जब रात इतनी हसीन हो तब दिल भी पुराने और खूबसूरत नगमों की तरफ चला ही जाता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों और नगमों का सिलसिला रात सुरमई में। तो ऐसी ही हसीन रात पर पेश है रॉकी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ में।

दोस्तों, जब तक कुछ बातें होठों तक नहीं जाती, वो उसके बाद सीधे दिल से निकलकर एक एहसास बन जाती है। तो इन्हीं खूबसूरत जज्बातों को समेटकर चलिए सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गीत।

कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, बस अंदर ही अंदर इंसान को खामोश कर देते हैं। उसी खामोशी और अधूरे एहसासों को आवाज देता है जिस्म फिल्म का ये दिल छू लेने वाला गीत।

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, कभी कभी कुछ मुलाकातें वादियों की तरह खूबसूरत और यादों की तरह हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं जुनून फिल्म का ये गीत।

दरवाजा तेरे शहर का चाहिए मुझको, दरवाजा तेरे शहर का चाहिए मुझको, जीना है मुझे ताजा हवा चाहिए मुझको। वो गर्म हवाएं हैं कि खुलती नहीं आंखें, सहरा हूं मैं बादल की रिदा चाहिए मुझको। और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके

बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगसामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 1-2 दिन में वर्षा हो सकती है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, एक था गुल एक थी बुलबुल। मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ लिए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: शिकायतें तुमसे हैं तो समाधान भी सिर्फ तुम ही हो मेरा। शिकायतें तुमसे हैं तो समाधान भी सिर्फ तुम ही हो मेरा। हाल जैसा भी हो मुझे चाहिए सिर्फ साथ तेरा। गैरों से शिकायतें क्या हम तो बात तक नहीं करते। गैरों से शिकायतें क्या हम तो बात तक नहीं करते। यकीन ना हो तो देख लो इतिहास मेरा। 3:26 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

और 32 मिनट हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, साथ तुम्हारे हजारों का मेला। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। दुनिया की भीड़ में खुद को पाओगे अकेला। 3:38 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये अब आप सोचिए। करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं, करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं, आती है फिर जब अपनी याद तो उसमें भी तुमको ही पाते हैं। यादों का ये दरिया है या है एक समंदर, यादों का ये दरिया है या है एक समंदर, एक बार जो फंसे तो फिर और फंसते चले जाते हैं। 3:51 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी। ईरान ने सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त करने, अमरीकी प्रतिबंध हटाने, ईरानी संपत्तियों को जारी करने और हॉर्मुज जल मध्य के प्रबंधन में ईरान की भूमिका को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। ब्रेंट क्रूड का दाम 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of the decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoid unnecessary gold purchases. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. For the second leg of his visit, the Prime Minister will reach Netherlands on Friday. This will be Prime Minister's second visit to the Netherlands after his previous visit in 2017. And Assam preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of BJP leader Himanta Biswa Sarma as Chief Minister for a second consecutive term. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sarma visited the venue to review the arrangement. Speaking to the media, he said, Prime Minister Narendra Modi, Union Home

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, और इसमें मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम इस गीत के साथ।

इतना है तुमसे प्यार, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

मैं आज बोलता हूं, सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते। सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते, जरूरत के हिसाब से ही निभाते हैं आजकल लोग ये रिश्ते। बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मतलब पूरा होते ही अक्सर लोग खत्म कर जाते हैं ये रिश्ते। 4:28 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, तो भाग तो पूरी दुनिया ही रही है। हासिल ए मंजिल यहां उसी को होती है जिसकी दिशा भी सही होती है। 4:35 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हों ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। 4:41 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

लता जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर करना क्या करना है। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 4:47 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, दुखों का पहाड़ है तो कहीं सुकून का आसमान भी होगा। ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहां पर, ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहां पर, सही समय आने पर हर समस्या का निदान भी होगा। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ। 4:59 हो चुके हैं, ठीक 5 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे।

0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ ही स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी धूमिल हो गई है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि अमरीका ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। उसने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतें 2027 तक स्थिर नहीं होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। In Assam, the stage is set for the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term today. Preparations at the Veterinary College ground in Khanapada, Guwahati for the historic political event are almost complete. Caretaker Chief Minister and Chief Minister-designate Dr. Himanta Biswa Sarma has yesterday visited the venue and took stock of the preparations underway. Later, speaking to the media, Dr. Sarma informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nabin will attend the swearing-in ceremony today. He added that several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states will also attend the event. Prime Minister Narendra Modi has called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat yesterday.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoid unnecessary gold purchases. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation as well as regional and international issues of mutual interest. For the second leg of his visit, the Prime Minister will reach Netherlands on Friday. This will be Prime Minister's second visit to Netherlands after his previous visit in 2017. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday. Ministry of External Affairs said Prime Minister's upcoming visit will further deepen India's partnership with Europe.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम इस गीत के साथ।

सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी, पर हम लोग यहाँ पर जिंदगी काटने नहीं जिंदगी जीने आए हैं। 5:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में ये दिल ना होता बेचारा। सम्मान और अदब के साथ कीजिए बात हर किसी से, सम्मान और अदब के साथ कीजिए बात हर किसी से, क्योंकि सम्मान सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी चाहिए। 5:21 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं, दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं, खुद से मिलने की फुर्सत ही नहीं। कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही, कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही, इतने लोगों से फिर मिलने की जरूरत ही नहीं। 5:28 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

लता मंगेशकर जी की आवाज में जीवन के दो राहे पे खड़े। यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा बाकी से बेहतर ही होता है।